आज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा, पूरन जाके भागा। मिल साध संग हर ध्याया, आठ पहर आराध्यो हर हर, मन चिंदिया।

सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाक रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला हरदास सुनी पब

हर सिमरत सब दुख लाथा, अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती, सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कर आए, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कर आए, नामे की वड्याई।

हर आराधो हर आराध सबो किच पाये कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु।

साच वखाना सोरठ महला पंजवा ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सुरैन साथ साथ संभाली पूरन सबनी साई रहाओ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वडियाई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम।

हमारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई।

हर काज श्रवणा बिछे खगौरी लाती संग मिलाए लिया मेरे करते संत साध।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म।

नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया, सूरत महला पंजवा।

संतो राम जपत सुख पाया, संत स्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अखत कहानी। सोरठ महला पंजवा, ऊखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। ऊखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दर गए मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए। रहाओ जो कामी काम लुभावे, क्यों हर दास हर जस भावे।

जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरणाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कथु नाही। साचे साहिब सिउ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुरु की सच साखे गुरपूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ शरणाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरणी पाई है दर्शन पेटत होत आनंदा।

तिसें प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर शब्द गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए।

परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह की नी रहाओ मुकत पंस जान्यो तैनाहिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो न उपजो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हार्यो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभु की शरण विचारो जे सिमरत गन काशी उदरी ताको जस उधारो रहाओ अटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपय पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरह पारा सोरठ महला नामा प्राणी कौन उपाव करे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ कौन कर्म विद्या कहु कैसी धर्म कौन फुन करी कौन नाम गुरु जाके सिमरे पाव सागर को तरी कल मैं एक नाम कृपा निद जाहि जपे गत पावे और धर्म ताके सम नाहिन एह विद वेद बतावे सुख दुख रहत सदा निर्लेपी जाको कहत गुसाई सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्यायी सोरठ महला नामा माई मैं केविद लखो गुसाई महा मोह अज्ञान तिमरमो मन रहो उरझाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर नह छूटी अदमाई साध संग कब हो नहीं कीना नह कीरत प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुन राख ले हो सरनाई सोरठ महला नामा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिखियन को तावत के विद्रो को ताहे रहाओ वेद पुराण सिमरत के मत सुन निमख नाहिए बसावे पर तन पर

जब ही शर्मसार की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ मेला नावा रे नार ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार रहाओ, बारू पीत बनाई रचपच रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहन पाजले नाम मुरार, कहो नानक निज मत साधन को पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ मैला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो,

ओ संग छाड़ सब पागे, कहो कहा जिया मन बौरे को, इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन, जस तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यों पयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश, कहां पयो जो मूड मुडायो। भगवो कीनो पेश रहाओ, साथ छोड़ के झूठे लाग्यो। जन्म अकारत खोयो, कर पर पंच उदर निज पोखियो। पस की न्याई सोयो।

नाम रतन बिसराना रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औद सिरानी कहो नानक हर बिरद पछानो पूले सदा प्राणी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हर शोक ते रह न्यारो नाहे मान अपमान।

मत साई। मन बैराग रतो बैरागी, शब्द मन वेदिया मेरी माई। अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग, सो बैरागी जे खसमें पावे। हृदय शब्द सदा पैर रचिया, गुर की कार कमावे। एको चेते मनुआ ना डोले, तावत वर्ज रहावे। सहजे माता सदा रंग राता, साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम वसै सुख पाई। जेबा नेत्र सोत्र सचराते, जल बूजी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी, निज कर तारी लाई। पिखिया नाम रजे।

दूजा भाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम न पाई सुन समाद महापरमार्थ तीन पवन पत नामं मस्तक लेख जिया जगजोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सो कर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से ही साध जान ज्यों गूंगे मिठियाई अकथे का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यों चलाए त्यों चाले पाई होर क्या को करे चितराई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यानं नाम मन पावे कहे कहावे तत्तो तत्व खानं सबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मानं सोरठ महला पहला तित्त की आशा मन सा बंदनी पाई कर्म तरम बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुख उपजै पाई सो आत्म तत विचारी।

कह पारी। दुर्मत कणे विगूति पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम ना पाए पाई, बिन नाम में परम न जाई। सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई। गुर सेवे सो बूजे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड़ बोल बिख खाई। पंडित दही विलोइए पाई, विचो निकले तथ। जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हावत। गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख। एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए। बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछु न जाए। गुर मिले पौ मन वसे पाई, पै मरना सच लेख। मज्जन दान चंगियाइया पाई, दरगह नाम विशेख। गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई, मन वस्या चूका पेख। ए तन हाथ सराफ को पाई, वखर नाम अपार। ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई, गुर शब्द करे विचार। तन वापारी नानका पाई, मेल करे वापार। सोरठ मेला पहला, जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे। तिनके साथ तरे, तिना ठाक न

परमपो होवे नाथ मिल संत सवा मन मांझी है पाई हर कै नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवे प्रगास। गुर बचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश। तिस पावे ता मेल ले पाई हृदय नाम निवास। गुरमुख कमल प्रगासिए पाई हृदय होवे प्रगास। प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश। गुरपूरे संतोखिया पाई एनस लागा पाओ। रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई नेचल पाया थाओ। जिस प्रतीत ना आवई पाई सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब है पाई हौ तिसके बल जाओ। ओ निर्गुणिया रे पालदा पाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर। सास गिरास ना विसरै पाई पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा भरपूर। जिना प्रीत न लगिया पाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई पौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया पाई की तुन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई पोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटनहार। सोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे तैं अपना नाम जपाया। बाहर काड बिख पसरिया प्यारे माया मोह वधाया। जिसनों की तो कर्म आप प्यारे तिस पूरा गुरु मिलाया। सो आरा दे सास सास प्यारे राम नाम लिवलाया। मन तन तेरी टेक है प्यारे मन तन तेरी टेक। तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए। साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए। तिना पिछे छुटिया प्यारे जो साची शरणाए।

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिगारी नाओ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुर पुरख मनावे अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप ओगन हारिया सब तेरा शब्द वरते उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा हौ मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजे भाए पूरे सतगुरु राय।

सच नाम चित लाया। बिन नावे जग कमला फिरे गुरुमुख नदरी आया। तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया सुख दाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग न जाने परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया। गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया।

तन मन शीतल होया रसना हर साध आया सबदे ही नाउ उपजै सबदे मेल मिलाया बिन सबदे सब जग बोराना बिरथा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित विद पाई है तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है।

फिर मिलन ना पाए नहीं जम्मै ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे। नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ। ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ। पौड़ी जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया। से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना हर

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। सिर हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरतै इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपिया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आयो जित कुछ सोजी पाए, विन गिठा क्या साला ही है अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछा

तीजा हर गुण तोट न आवई कीमत कहन न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पाठ कर कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर श्लोक महला तीजा।

पाए मन हथ सहज न बीजियो उखा के अगे खाए नाम निधान विसारिया दूजे लगा जाए नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी।

गुरुमुख आप निवार है सब राज सुष्ट काले, नानक गुरुमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरुमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक

पौड़ी। जो हर नाम त्याय दे से हर हर नाम रते मन माही, जिना मन चित इक आराध्या तिना इकस बिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेम दे जिन तो

आप गवाए अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख ना लग गए आए नानक जी।

सा सिद्ध सा करमात है, अचिंत करे जिस दात, नानक गुरमुख हर नाम मन वसै, एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी। हम ताडी हर प्रभु खसम के, नित गावे हर गुण चंता, हर कीर्तन करें हर जस सुने।

कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अनदिन भगत हर उचरे, हर भगति माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमती हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा दिया, सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पिरके पाणे।

नारी ओ कर कर फिरे कसुद मन जो तरकत नारी वद पागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मेलो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी श्लोक महला तीजा।

पहला चौथा। हर दासन से प्रीत है हर दासन को मित, हर दासन के वश है जो जंती के वश जंत, हर के दास हर

सतगुरु मिले ता पूरा पाया, हर रस रसन रसाई पौड़ी, रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाव तेरा त्यावना, तू दाता दातार तेरा जुखा खावना, भगत जना के संग पाप गवावना, जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना। श्लोक महला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मद्दम, सतगुर की प्रतीत नाही, अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे खपे कपाही, सतगुर का पाना चित ना आए, अपने स्वाय फिराही, कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाए।

हौ मैं खपै खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कबू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुर चरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पय पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाए नामो चितवे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

मरकत लो सब लोग कुटुंब भयो आ गए हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ चूठी माया आप।

खारी अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब

को पानी, आपन बापे नहीं किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्यापियो, भगत नहीं संतापा, कह रविदास भगत।

लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हौ बिन गांठे जाए पहुंचा। रविदास जपे राम नामा, मुझ जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत की खनकी।

नाही ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

कोय ताकी सेवा सो करे जा को नजर करे। तुद बाज प्यारे केव रहा सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहां रहा। सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोए नानक ता का दास है बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहा। तनासरी महला पहला हम आदमी हाँ एकदमी मोलत मोत न जाना नानक बिनवे तिस सरे वो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ सास मास सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा। नानक शायर एव कहत है सच्चे परवदगारा जो तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किस पाई है पूर्व लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वक्र नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीन ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे कीते क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विन नदरी नानक नहीं कोए, श्री महला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए।

आत्मा परात्मा एक हो करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, गुरु प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए राव, सच सिमरिया हो वे प्रगास, ताते बिखिया मह रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंथ नानक करे विचार, साची बाणी से तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विस्तर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ, जित लग तरना होर नाही थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदातार, तना श्री मेला पहला।

कूड़ कबाड़, पावे सब आखो संसार, तुद पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तनाफरी मेला पहला, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिए तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई राव, कादी कूड़ बोल मल खाए,

को जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दानस बंग सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़या बूझे सो प्रवान, जिस सिर दरगे का निशान, तना श्री मेला पहला हर तीजा।

आई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभाप मिलाए, तनासी मैला तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवे जाए दूजे लो भाए, दूजे पाए सब परजवी गोई, मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई, पगत

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सब सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ, साचो साच संभालो दुख जाए। साचे शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाणे चले ताँ आप जाए। सात महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ताँ सुख पाए।

सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान।

परम पट फूले गुर प्रसादी जाने साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मानिया। सनासरी मैला चौथा कर पहला चौक दे

निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कहे ना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बै संतर पायो, मल पापी कटके उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी। हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा। हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आग कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक की रहे, तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मिस कह न सके।

लागी। नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथागी। तनाश्री मेरा चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा। जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता। हम किसके सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस्तानी। हर हर कथा सुनो एक निमक तल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरुष वडानी। तिनकी तूर मंगे प्रभु स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफल्यो बिरत प्रभु स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुकानी। जिनके बड़े पाग वड ऊंचे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभु स्वामी जन नानक दास दसानी। त्रासवी मेला चौथा हम अंधले अंध दिखे बिचराते क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो। हर हर कथा निराली राव हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवियो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। त्रासी मेला चौथा हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सकूं एक राती जो बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अप आगा हम ले न सके अंत माती। तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जपियो गुर रंग चलू ले राती। हर हर भगत बनी अप सोबा हर जपियो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बना वे पाती।

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनासरी मेला चौथा कल जुगता कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जप्यो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जप्यो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साथ जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनासरी मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरु पूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग भय हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नापति ने। जन नानक हर हृदय सब प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ति आई। हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी गुरु भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बने आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पय है सखाई। तनासरी मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जगदीश

तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनाश्री मैला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हूँ तिन कै सब दलिहारे जाऊं रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देओ सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। तनाश्री मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी बोलो पाई हर कीर्त हर कर जल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनों जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से अवर सब त्याग को हर पानी। तनाश्री मेला चौथा

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचन निरंकारे कोट पराग मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम सुमारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल मैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे जो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। रात्रि मेला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल च्यों हेत बढ़ायो।

इसके बहराई ब्रह्म पसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा मेल कियो मेरे राजन। बिन सियो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा, जल थल मैयल सर्ग निवासी नानक रमैया डीठा। तना श्री महला कन्या जब से दर्शन पेटे साधु परे जिनस ओए आए, महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए। अब मोहे राम जसो मन गायो कयो परगास सदा सुख मन में, सब गुरु पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा, कई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। चिंत अचिंता सोच असोचा।

होते, तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांते कनक वखानी प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनाश्री मैला पंजवा वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्हीं तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा काम वंक कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तना श्री मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई वर्ण न साको उस्तत, ताकी कीमत कहन न जाई, काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो मनता, दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनाश्री मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जे हर हर नाम दृढ़।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पतपूरी नाम लैच कोट अगमासे, भगत बांसे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना। शीतल शांत महा सुख पाया, संत संग रहो ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, ए नानक कीनो चोला।

जन्म पदार्थ काच बाद जीत जन्म जन्म के किल बिख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई साफ पास मन नाम समारे ए विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवे सब मध्ये जब तक पेसो जाए तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जाप पाप पगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अधाई तनासी मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओह डीठी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पह सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुरु आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत न व्याप माया संत प्रसाद महा सुखताया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे सनासी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले त्रासरी मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक स्नाना उन दान बहुदैन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव जाप ताप कमन बसबा कर उर्द ताप ले गैन ए विद न पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

नानक शरण पर्यो दुख पंजन, गुण गावे सदा आकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार। त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन चितारिया, पतित पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, सुंगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांचे नित नानक, पुनः पुनः बलिहारिया। त्रासरी मैला पंजवा, मेरा लागो राम स्यो हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई, जिन दुख का काटिया केत रहाओ, हाथ दे राख्यो।

गुरु समझाया आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया तांते मोह तारी ओत गोपाल शरण परयो पूरन परमेश्वर बिन से सगल जंजाल रहाओ सुर्ग मृत पयाल पू मंडल सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल कारण हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना कर कृपा।

संग ना चाले तिन स्यो हीत, जो गहराई से ही मीत। ऐसे परम पुले संसारा, जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा। साथ तरम नहीं पावे दीठा, चूठ तो स्यो रच्यो मीठा। दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे। हुक्म ना बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछोताने। जो तुद पावे सो परवान, तेरे पाने नो कुर्बान। नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रभ मेरा। तनाश्री मैला पंजवा, मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार। खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम। हलत पलत ताके आवे काम, नाम रते प्रभ रंग अपार। साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ, साध की शोभा अत मस्कीनी। संत वडाई हर जस्तीनी, अनद संतन के पगत गोविंद। सुख संतन के बिन सी चिंद, जह साध संतन होवे इकत्र। तह हर जस गावे नाद कवित, साध सभा में अनद विश्राम। उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम। दे कर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुणतास। प्रभ दयाल किरपाल हजू।

नानक जा को कृपा की जय। श्री मैला पंजवा मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक बिखिया विकार, देख सगल है सी के एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो, अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला तिन ओट गही संत पला, तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना। पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान, एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मैला पंजवा कर सतवा इको ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह मां पौजल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक दिन सुरैन चितारे, साध संग जप निसंग मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारे, साध जना की रेन नानक मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा कर अठवा दो पदे इको ओंकार, सतगुर प्रसाद। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई जब तक मोहे रखवाले। गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए नशा कह जा ले रहाओ। निर्तन कौ तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। श्री मैला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनग सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का रव रहा सर्व ठाई राव। ताको कोई न पहुंचन हारा, जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम से आई। श्री मैला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ, पोमवंत अभिमानी, राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवार, जैसा बित तैसा हुए वर्त है, अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पे इक आसर, शरण शरण करे आए, संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। श्री मैला पंजवा जान को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै, जा का सतगुरु पूरा। ठाकुर गा ये आत्म रंग, शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही रे, संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुखे ही। श्री मैला पंजवा जतन करे मानुख डैकावे, को अंतर जामी जाने, पाप करे कर मुकर पावे, पेक करे निर्वाने। जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर, उत ताके उतते उतते है, आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटे नाही मन परमा, तब लग मुक्त न कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। श्री मैला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने, जा कै मस्तक करवा, नाम दृढ़ावे नाम जपावे, ताका जुग में तरवा। जन को नाम वडाई सोब,
नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ। नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह, नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल, रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल, हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल। तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे, सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार को तैसे ही प्रपाल रहाओ। नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा, ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनाश्री मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध दिख जा रे, राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे। मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जाम है संत बसारे, जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। सनातरी मेला पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात, एक नाम दियो मन मनता दिलस ना कतहू जात। सतगुर पूरे की नींदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ। अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात, नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी, मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी। साकत की आवरदा जाए बिरसारी, जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ये बंधन छुटकारी, बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी। तनासरी मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती, रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने के चरण कमल निज थाती रहाओ। जिसका साथ ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति, मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती। तनासरी मेला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे, प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को, कर गए उदरो मीत रहाओ। सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप, नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप। सनातरी मेला पंजवा चतुर दिशा तीनो बले अपना श्री ऊपर कर तारे हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शन

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सद कुर्बान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सोग अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाय प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना देव पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे मिल साधु बिन से शोक सनातरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम मां संतोष होवे गुरबचनी प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सब खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूर्ण काम सनासरी मैला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार रहाओ जह जह देखो तह तह स्वामी कोई न पहुंचन हार जो जो करे अवज्ञा जन की हो गया तत्चार करण हार रखवाला होआ जाका अंत न पारा वार नानक दास रख

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से काढ़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साधु पूरे। प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। त्रासरी मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सुरा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एवो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एव पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा। अंतर जामी नानक।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वडे भाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाए। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा। रहाओ कोई हो आ कर्म रथ कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरया।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो के गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहा मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना, जोबन तन प्रभ ताके मद में, एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, सासियो मन न लगाना। जन नानक को तन में किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी मेला नावा तिहि जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा उस तक नह जाके, कंचन लो समानो, हर्क सोग ते रहे अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी मेला नावा अब मैं कौन उपाव करो, जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पत्यो उदर परो, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, हावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल इक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभवन ज्योत रहे निवलाई, सुर नारे नाथ से शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हो मैं मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सनासरी मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जै देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुर पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभु के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभु मन पति आया, पर पर फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पै उदासा, मन मैले सूचा क्यों होए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभु तुझ सालाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज

जायो मानस जन्म संयोग पाया ताकि है ओत साद राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद नह चूके मन तेद एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल आश्रम कीने मनुआ ने पतीने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों के खै मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी तो प्रसन्न

तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा। हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सत बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीरथ मजना। साच ना लागे मैल क्या मल धोइए। गुणे हार परोए किसको रोइए। विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे। आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे। आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल विख पर हरे। सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नावनो। गावे गावन हार सब सुहावनो। साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते। तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी त संगम सत्सते। आराध एकंकार साचा नित दे करे सवाया। गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया। कहन कहे सब को एके वड आखी है। हाँ मूरख नीच अजान समझा साखी है। सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा। पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा। आखन कोट न पगत पंडारी पर पुर रहे सोई। नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई। सनासरी मेला पहला। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो। साचो साचा नाव गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई। परवाना आया हुकुम पठाया फिर न सच्चे कोई। आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई। नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो। हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकत सहाए सच में साच समाना। आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना। सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई। तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो। एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो। दो रहा चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा। नानक साहिब सबक सिंजापे साचा सिरजन हारा। भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो। बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द विकाने। पारस पर कै पारस होए जा तेरे मन पाने। अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहंदर साचे साचे के वापारी। भूख प्यासो आज क्यों दर जाए साजियो। सतगुर पूछो जाए नाम ते आए साजियो। सच नाम ते आई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना। करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी। तनासी संत मैला पहला। तिर संग मूठड़िए खबर न पाया जियो। मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो। लेख ना मिटई पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी। गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी। तन जो बन आख की छाया बिर्द पै दिन पुन्या। नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुन्या। बूढ़ी कर का लियो गुर कह पाए चलो।

सहज नाम समावे। आप करता करे सोई, आप देसा पाई है, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसर जियो, कदे ना विसारी अन दिन समारी, जा नाम लई ता जीवा, श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है, गुरमुख अमृत पीवा, नगर करे ता सतगुर मेले, अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर है, सत संगत मिले वड पाग, ता हर रस आवे जियो, अन दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो, सहज समावे ता हर मन भावे, सबा अतीत बैरागी, हलत पलत सोबा जग अंतर, राम नाम लिव लागी। हरख सो दोहा ते मुक्ता, जो प्रभ करे सो भावे, सत संगत मिले वड पाग, ता हर रस आवे जियो, दूजे पाए दुख होए, मन मुख जम जोया जियो, हाय हाय करे दिन रात, माया दुख मोया जियो, माया दुख मोया हो मैं रोया, मेरी मेरी करत रिहावे, जो प्रभ दे तिस चेते नाही, अंत गया पछतावे, बिन नामे को साथ ना चाले, पुत्र कलत्र माया तोया, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो, सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो, प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया, अन दिन जपत रहे दिन राती, सहजे नाम ते आया, नामो नाम मिली।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना। सुरपत नरपत नहीं गुन जाना, चार वेद अर सिमरत पुराना।

काल अहेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैसना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहानि होरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोक के जैबो, ओछे तप कर बाहुर ऐबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज बिदै बडियाई, अंत न काहू संग सहाई, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कवने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजामल गज गनका

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाए जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए चूठी देही राव। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई बारह जोजन छकर चले था देही गिरज न खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई कहां भयो दर बांधे हाथी खिन मैं पई पराई दुर्वासा स्यो करत ठगौरी जादव ए फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी पंचों का मिट नावो सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो पाछे बौर न आवन पावो अमृत बाणी करते उचरो आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक पगतन ते डर पावो ए संसार ते तम ही छूटो जो माया नह लिपटाओ माया नाम गर्भ जोन का ते तज दर्शन पावो। इत कर पगत करें जो जन तिन पौ सगल चुकाई है कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मार वार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला जो कोकिल को अंब बालहा क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसाबिरा अथोन पुरसाद मरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंडी में सागरा रहाओ।

कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तनाश्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे मादो एक जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर्ष्यों पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे।

तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनासरी बाणी भगता की त्रिलोचन इको ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ संतरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मदे मिलो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित तात्विक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लहे न पारवी कर्म कर कपाल मसीत श्री अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं कर्म कर खार मसीत श्री दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटेरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा।

रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो तूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती काया बोखंड खोजते नव निध पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे कन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया चादननी का अनाज मंगो सब्सी का गौ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैसरी महला चौथा कर पहला चौप दे ओंकार सतगुरु प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड़ पए है मनमुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलंथा जैसरी मैला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका खाका रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन न लाखा ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग दिख चाखा हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाग तुम पाखा जेवा क्या गुण आख वखाने तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा जैसरी महला चौथा हम बारक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुग्ध इयाना हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे मेरे प्रीतम नाम पराना दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुवाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना तिन हम चरण सरे वे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना तन तन सतगुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना जैसरी महला चौथा
सतगुरु साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा, माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुरु बचनी बिच हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साद, गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके भाग खीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाए बा, ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाए बा, जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाए बा। जैत सरी महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा, तिन सुन्नी देख रैन बिन नावे, होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम, हर पाई है सतगुर माजा, हाँ बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वडपागी, सब किल विख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना, हर किए बहुगुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जैत श्री महला चौथा। सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा, अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई, सतगुरु हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ। साकत बंद पए है माया, बिख संचे लाए जकीड़ा, हर के अर्थ खर्च नह साके, जमकाल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा, हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी।

हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर के रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगत को महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुर समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत् कढ़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत्संग उमाहाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप उमाहाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म तर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप सोवाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम।

ठाकुर प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदह, तामे संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाये। जैत सरी महला पंजवा, करती जा दुपदे।

देहो संदेश रो कहियो प्रय कहियो। विषम पई मैं बहु विध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो। वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पयो। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बचहियो। जय श्री मैला पंजवा। तीरो सुन तीरो प्रभु को रहाओ। जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभु को नीरो। बेकुमार बे अंत बढ़ दाता मन है गहीरो पेख प्रभु को। जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जय श्री महला पंजवा। लोड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन बिसरे न काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से प्रम अंधेरा। थान सनंतर सबनी जाई जो दिसे सो तेरा। संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जय श्री महला पंजवा। काल चौथा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी से आनप चिंत विसारी। अहंक छोड़ो है त्याग रहाओ। जो देखो तौ सगल मोय मोहियो। तौ शरण पर्यो गुर पाग। कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग। जैत सरी मैला पंजवा। मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा। प्रभ जियो मया करा रहाओ। ताल जाल अर महाजंजाला छुटके जमे डरा। आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा। अपियो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा। जाको पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों। वाको ब्याज न काई रहाओ। दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई। एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई। तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत श्री महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे में दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप। अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप। हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक। काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना। दीजे प्राण अकोर रहाओ।
मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर, या रस में मगन होत किरपाते, मां बिख्याते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन,

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ

दान कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगौरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लाए लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जैत श्री मैला पंजवा आए अनक जन्म प्रम सरणी उदर देह अंध कूप ते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी सुख संपत माया रथ मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम पगवंत पगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय।

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौता।

आओ। महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा, कै मर्दे को विसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया, कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया। नाहन गुन नाहन कछ जप तप, कौन कर्म अब कीजे नानक हार पर्यो शरनागत, अबे दान प्रभ दीजे। जैत श्री महला नावा। मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसार आ रहाओ। जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जग तुम्हें हर को कबहू नाए संभारा, नानक शरण पर्यो

संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया तिस दस प्यारे

जय प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जीवे संतिया जन नानक गुरु पू

आई। माँ मंगल रह सिया फिर दयाल सद नवरंगिया, वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूली है मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूली है लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक नृत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याये त्याये सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियेरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान संतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया कीने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्टिया करते पाप अनेक माया रंग रट्टिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हारंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईसे छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन ने निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारे।

पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वरे सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अग

मन वसंदड़ो सच सौ नानक हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर नाम मन चिंदे।

कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तार में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

छतर चमर तक आसनम रतंत मूण अज्ञान अंधे नामिक सुपन मनोरथ माया सुपने हब

लोक बसंत स्वर्ग लोक जितते पृथ्वी नौ खंडने बिसरंत हर गोपाल नानके ते प्राणी उद्यान भरमणे कौतक कोड तमाशया चित नया वसना नानक कोड़ी।

कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रसमिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विधड़े।

संता संग उधार सगला दुख लथास। श्लोक भावी उदोत करणं हर रमणं।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग्यानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तो खा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह विस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो, तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साज संगत स्यो, इक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, इक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो, ने बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए किरपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा, कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी सेजा, कामन थाट बनाया। संग न पायो

भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापतित ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो त्वारो पावो जो तू दे सही ए तृप्त है आन न कथमूतावो सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुणगाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

रोग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रह इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरवाना। सबना दे अधारी, नानक दा संत पाछे पर्यो। राख लेहो ए बारी, टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निध गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहुते छूटे। पव जल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण, टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किछ निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक। सब देखे लोग सबाया, टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तापन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे, टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास।

बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ। जिसके से फिर तिन्ही संभाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाये माया रत बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप।

लप्यो रे मूड़े कछु ना सोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो। सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। तोड़ी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो। गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा। हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया। महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया। सब किछ तिसके

पूरो मन हर रंगो लोड़े गाली हर नी न होए राव हौं तू देंदी दर्शन कारण बीती बीती देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्व गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

सागड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राचित मिट्यो रे। जाको लैणो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गरबार।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग के तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म तरम जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते। अपने भगत को पूरन दान रहाओ, खोवो परम राख मेरे प्रीतम। अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी शरण जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा, प्रभ तेरे पग की तूर, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन। कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ, दह विसरव रहा जस तुमरा। अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कहो न मरते चूर। कंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग इस

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किलविख नास। पूरन पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास। सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पा

सब देता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पै विस्मादा आनन बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस दे का ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरडी ठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिन से मद पीठे अस्थिर पे सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर पजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा कर गए काट लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर।

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न तुख।

हर हर चरण हृदय उधार, सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तक विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने, तिनका बहुर कछना विचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ।

कोई बोले निर्वाह, कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो, रहाओ पंडित होए के देख बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही, रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव

कुम्हार के कर हांडी अच्छे, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे, रांडी सांडी हांडी गो, बाणवे के कर हिंग अच्छे, पैसर माथे सिंग गो, देवल मदे लीग अच्छे, लीग सीग हीग गो, तेली के कर तेल अच्छे, जंगल मदे देल गो, माली के कर केल अच्छे, केल बेल तेल गो, संता मदे गोविंद अच्छे, गोकल मदे श्याम गो, नाने मदे राम।

सारा कोट कुटुंब करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा

सदा सदा हर त्याय सुखदाता जा का अंश न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रात है उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जा के हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम हित त्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर्षो प्रीत लगाए दिन हर प्रीत होर प्रीत सब चूठी चित सुन में बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्वकल पूरा किस कीमत।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज कुलंग महला पहला कर पहला

मैं दर मांगत पीखिया पाए रहाओ केसर कुसुम मृगम हरणा सर्व शरीरी चरणा चंदन पगता जोत नेही सर्वे परमल करना क्या पट पांडा कहे ना कोए ऐसा भगत वर्ण में होए तेरे नाम निवे रहे लिव लाए नानक सिंदर।

लीतना ला बिरंगाए मेरा कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए। हो कुर्बाने जाऊं मेरवाना हो कुर्बाने जाऊं हो कुर्बाने जाऊं सुना के लैन जो तेरा नाम लैन जो तेरा ना।

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंसे भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला, त्यागड़िए मानड़ा का

कूड़ सिर प्रधान वे लालो काजिया बामना की गल थकी अगर पड़े शैतान वे लालो मुसलमानिया पढ़े किताबा कष्ट में करे खुदाए वे लालो जात सनाती होर हिंदवानिया एदी लेखे लाए वे लालो खून के सोयले गावे नानक रत का कुंगू पाए वे लालो साहिब के गुरु नानक गावे मातपुरी आत्म सोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला सच्चा सो साहिब सच तपास सचना न्याओ करे गुम सोला काया तपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला आन अड़त्र जान सतान में होर भी उठती मर्द का चेला सच की बाणी नानक आख है सच सुनाए सी सच की।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साए साचा केले सब हर तन साला है सच सब ऊपर हर तन जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वरते नानक आप झूठ कहो क्या गनी।

गुण तामन तामन करे तो प्यारे को पावे, जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया कही है रे सोई, जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई। तात मिले कुन तात को, लिव लिवे को तावे, गुर पर सादी जानिए तो अन को पावे। पानावारी हुए कर खरसार न जाने, रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने। अप्यो पीवे जो ना

हरकिया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिल गुर सुख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊं दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाना मन्या तिन तुम तुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को है वारी जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना सा हर तेरी उस्तक है जो हर प्रभु पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिना हर से की तिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया कोई आप छुटे परवार सो सब जग छाया गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो

किया से आप हर पाया हर गर्जे पहनाया हर आप गलनाया जो गुरमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दी जय हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पी जय पान सुपारी खातियां मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर चेतिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिए उस करे पसाओ है गुरु विटो सदवारिया जिन बिटड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हो वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आसी है कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वदाने हो सतगुर को सगवारिया गुर बचन समाने तू ठाकर तू साहबो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहु रंग

जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफिल सोया जो तन उपजया संग ही सो भी संग न होया रहा माँ पिता सुत बंग जन हित जासियो की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुरु गाए लै सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी।

देव कतेव इस तरह पाई, दिल का फिक्र न जाए, सुख दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ते जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे, जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर होए,

यार क्या करी, नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीति तेरी बिगाड़ी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा रखती।

0: पालुमृग अजुनि सहनु गुरु प्रसाद।
1: राग सुई महला पह

होई निराश जमावो। जपो साए को नामा अवर निराशुल कामा रहाओ। ए मन की थी हाथ करो सुन नेत्रों नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिया है इन विद अमृत पावो। मन संपत जित सत्सर नामन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न को।

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिख खाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा स।

सतगुरु प्रसाद। जोग ना संसार, जोग ना दंड, जोग ना पसंद कराय, जोग ना मुंडी मूल मुडाय, जोग ना संगी वाई, अंजन मन निरंजन रही है, जोग जुगत तुर पाई है। गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई रहा। जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देश दिशंतर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है। सतगुरु पेटे का कैसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है। निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाई है। अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है। नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है। वाजे बाजो सुनजी वाजे, तो निरपो पद पाई है। अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है। सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा। कौन गुरु कहते दीखिया लेवा, कहते मुल करावा। मेरे लाल जियो, तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मई।

कतहू की तरसो सो टोली इन बिद चित रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना वे तिल जावा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब दी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर वेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रसमान, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वदे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुठे हर रंग चालिया, फिर गौड़ न होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठे हर उपदेशिया, हर के त्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रवचित न आयो मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलेत पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पायो खुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे व्याप्या सबद न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो बूजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए समाए। सुही महला चौथा, कर दूजा इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभु प्यारा तू चुड़ाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुट।

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। तू ही महला चौथा, जीवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सह समाए। हर रस जन चाको जे पाई, तौकत अनत साध लो भाई। रहाओ गुरमत रस रस।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदासी सुतै किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित तैसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमस इत गाए। पतित जात उत्तम भया चार वरन पे।

जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध श्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे इसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीत

तू साहेब गुणी निधाना तुमरी ने मां बरना साको तू ठाकर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई ज्यों पावे त्यों राख मेरे साहेब मैं कुछ बिन अवरना कोई रहाओ। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझ आ गया अरदास मैं होर साओ ना ही जिस पै करो बेनंती मेरा दुख तुझ ही पासे। विचे धरती विचे पानी विच कास अगन तरी जाए बकरी सिंह इक पैसा राखे मन हर जब परम को दूर की जाए। हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने अमान दिवाए जो धरती चरण तले के ऊपर आवे त्यों नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए। तू ही महला चौथा तू करता सब किस आपे जाने क्या तुझ पे आग सुनाई है बुरा पला तुझ सब किस सूझे जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की दिव जाने बुरा पला तुझ सब किस सूझे तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मानस भगत कराई इतना सतगुर मेल सुख देवे एक मनमुख तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुझ सबना सिर लिखिया लेख जे ही तू नजर करे केहा को होवे बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने सब तुझनो नित त्याए जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले जन नानक सो थाए पाए। कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुकत पे जिन हर नाम से आया तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग भय गुरु वचनी जिना जपया मेरा

क्यों रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किस कर हम साके, ज्यो पावे तिवे बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कार लाया, जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद शिष्ट सब ताजी, कोई सेवा करो जे किसीता होवे, इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वड्याई हों आख ना साका, हों मूरख मुग

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाइए, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुरु प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे ताने।

माने हुकम तजै अभिमाने कैसे राती रलिया माने सुन सकिए प्रम मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लोकानी रहाओ सखी सहेली को समझावे सोई कमावे जो प्रभ पावे सा सुहागण अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पछतावे जब रैन बिहावे कर्महीन मनमुख दुख पावे बिनो करी जे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहा भरपूर जन नानक दावे देखा दूर सुई महला पंजवा गृहवास गुर की ना हो कर किनार दस दासी कर दीनी पतार सगल समग्री मैं कर की जोड़ी आस प्यासी तिर को लोड़ी कौन कहा गुण कंत प्यारे सुगढ़ स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया अमृत नाम कंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे गुण कामन कर कंक रिझाया वस कर लीना गुर परम चुकाया सबसे ऊंचा मंदिर मेरा सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा प्रगटिया सूर जोत उजियारा सेज विछाई सर्द अपारा नवरंग लाल सेज रावण आया जन नानक फिर तन मिल सुख पाया सुही महला पंजवा तुम क्यों ही हो मिलन प्रवताई खोज करो देखो प्रे जाई सुन सदेश रो प्रे गृह सेज बिछाई प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई किन विद हीरो तीर निमानो मिलता जन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विछी तन कंता तन सूती तिर सज्जा गंता पियो मधुरो तन मतवंता तन जागे जे

होए कृपाल प्रभु मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी तब करें तिरपाया, सगल सिगार हूं मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह तिर है पाई, खोलो कपाट का मंथ।

क्या सेव कमावो क्या कहरी जावो विद कित पावो दर सारे मित नहीं पाये अंत न लइए मन करते चरनारे पावो दान तीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक को गिर।

कुचल कठोर कामी मुख की जय। दर्शन देख की वड़ियाई, तुम सुखदासे पुरुष वाई। रहाओ दूजा सुही महला पंजवा, बुरे काम को ऊट खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोह रंग लपटाना, रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बोर बोर लपट्यो जंजारा, रहाओ बिके नाद करन सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे, रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहे साथ संग दी जय। तो किस पाये जो हो ये रे ना, जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुही महला पंजवा, कर में ठाकुर नदर ना आवे। गल में पान ले लटकावे, परमे पूला साकत फिरता। नीर बिरोले खप खप मरता।

गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पामलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सो।

किसे न बिसरे काहू बेरा रहाओ। बैखरीद हो दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा। कोट दास जाके दरबारे निमक निमक वसे तिस नाले। हो किछ नाही सब किछ तेरा ओत पोत नानक।

चाहे गीत नाद अखाड़े संगा, उहा संत करे हर रंगा, चाहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वरखा, दोहज कथा ए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा के दर्श पाप कोट उतारे, पेटत संग ए पव जल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, रहाओ जा का सबक सुनत सुख सारे, जा की तैल जम दूत बिदारे, जा की तीरथ इस मने सुधारे, जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक प्रभ

जाके सिमरन कछ पौ ना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण धारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करना धारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी।

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची देह मान अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया किन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा हत कुतीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रव मेरे नी जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रव

कट कट अंतर पार ब्रह्म पछाने, जो किछ करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी। सुही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करणे हार, सगल सिष्ट पौधे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे। सुही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस जाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला।

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साहा, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा, बैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महे निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे, लोभ मुआ तृष्णा।

कर कृपा प्रभ अपना करया, तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना, रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए, सुई महला पंजवा दीन छदाए दुनी जो लाए, दोही सराई खुनामी कहाए, जो जिस पावे सो परवान, अपनी कुदरत आपे जान, रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तोसे दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे, अगम अगोचर सच साए।

प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवे खाप खर्चत सुख आनंद विहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक नाम।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बने आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर

अब गावे गुण सदार साला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा बैठी जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माद दे पाज दिन

करण पोखण संग औद्विहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभु।

काज ना जाने रूड़ा, सूथे तंदे रचियो मूड़ा, जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाव जपना, रहाओ हर के दास हर से तीरा ते, राम रसायन अंदिन माते, बहां पकर प्रभ आपे काडे, जन जन्म के टूटे गांडे, उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे, सुई महला पंजवा, संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया, गुरु त्याए हर चरण वंची ने, ताते करते अस्थिर कीने, रहाओ गुण गावत अच्युत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी, कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए, सुही महला पंजवा, अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिस की गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी, रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई, सुही महला पंजवा, कर पूजा, गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला, रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाके संत रवाला, सुही महला पंजवा, तिस दिन दूजा और न कोई, आपके थम्मे सच्चा सोई, हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार, रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ, तू ही महला पंजवा, दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग परा

दया न पाए, अनेक जन्म बीतने पर माई, कर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दी जाए।

कामना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतो खाए ऐसो राज ना किते काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर विद्या जे रच लो भाए सब किस तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए उही मैला पंजवा हर का संत प्राण तन तिसका पनिहारा पाई नीत सुत

की न्याई, पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाई, अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार, अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार, कितवो मन आशा करो जन का

ना। जब मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है, संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया। रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया। नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया, बहु विध प्रिया पर को हिरिया। दिखना क्रिया अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया, सुही महला पंजवा। रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा। रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

खाई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे सो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर न तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुखदाते। दिन रैन सात सात गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद तिराई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हों सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। रहाओ वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे बिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन के

निमुख सिमरत जित छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रसादी करिए। रहाओ को तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

परम दया तै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या।

आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहू काची देह आनी कृपा करो प्रभ करने हारे तेरी बस निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याये तेरी गत में तू है जाने कुदरत कीम न पाये निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञान।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ए आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुख।

शाही सच्चे से पीराते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन कै पी।

कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ है कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही मैला पंजवा तुझ चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुझ सदा त्याए।

दर्शन को बल जाई, अमृत वचन हृदय उधारी, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पे सारी, तुझेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो एक।

तेरे सेवक को पोक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम से आयन सुख फल पायन, आठ

प्याइए गुर प्रसाद पाव करिए आप त्याग होइए सब रीणा जीव त्या यो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करे प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला राग सुही अस्पदिया महला पहला कर तहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहा सह सिदार कामन कर आवे पां सुहागन जा कंते भावे ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

सच्चे से तीरतिया जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे से उचित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन नाहे जियो। अवगण मुट्ठी जे फिरे बदक खाए ना पाहे जियो। गुर रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित्ते।

से पशुआ से तोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे, फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे, तित तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तल भी है, सिर मारे जिंदार जियो। लेखा मंगे देवना, पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे, बख्शे बख्शन हार जियो। अनको की जय मित्रा, खात रले मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुटी है, नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया, गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो। किंचो तान विगुची है, बुरा पला दोए नाल जियो। बिन शब्द तै रत्या, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया, सबसे दे आधार जियो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार।

लाल सावन मानिया गुर पूरा पाया। हौ जीवा गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे। मूरख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना। मनमुख परम पुलाना ना सिस रंग है, मरसी होए विडाना मन तन पंग है। गुर की कार कमाए लावा तारे आणिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया।

आपे रहा समाए सो विस्माद कया। ऊना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख हदूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वे ता एको जाने, हों में दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रे आसमाई। रहाओ गुरमुख गावे, गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंगा अंग कमावे, विखटे संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आख है, हों में विच्चों जाए। आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप साचे रंग राता, गुर कै सह सुवाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिक बीजै बिक खाए। जम काल बादा कृष्णा दादा, बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। असर तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफ सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर किसकेरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता।

सबो सच सच सच वरत है गुरमुख कोई जाने है जमन मरना हुक्मो वरत है गुरमुख आप पछाने नाम से आए तो सब गुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिसदा सब कुछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अक्सवालियो फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का शब्द समाले हर की भगत सदा।

काया अंदर संकिच वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली गुरुमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसे अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगद बूजे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाईए गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलन हारा, इह मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाईए मोल कित ही नाम पाईए नाही नाम पाईए गुर विचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे और क्या को करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौन पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही का जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी, राजसूही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुनिया ना साला है जो मरवंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा रे परवाहो रहाओ, दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिये वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे

नरके कोर पवन। हे मन जैसा सेवै तैसा होवै तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना कहना किछु न जाए। महापुरखा का बोलना होवै कितै परखाए। ओए अमृत परे भरपूर है।

सच्चा आसनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेले सो प्रभ सदा समाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए सो सो सच्चा विसरे त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसरे गुरमति विचार सतगुरु मेले ता मिल रहा साथ रखा उधार

मन मुख मन ना पिजई आत्मे ले चित कठोर सपै दूध पियाये अंदर हिसने कोर आप करे किस आखिए आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर जमे वारो वार पये किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है विच्चों ठाक राए गुर साला ही आपना निव निव लागा पाए तन मन सौंपी आगे तरी विच्चों आप गवाए चिंचो तान विगुची है एक स्यों लिव लाए हो मैं मेरा छड़ तू ता सच रह समाए सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन से पाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण विकन पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन सच वणन जय गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोयना रूपा पाप कर कर संचिए।

एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोहे दूजे व्याप्या, गुरमति सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए, गुर कै शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए, कामन रंग ता चढ़े जा फिर कै अंक समाए। चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुर सेवन, अंकर नाम निर्नाम है खान खर्चन ना निकुटे। हर गुण सहज रवन ना होए जन्मे ना मरे, ना होए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर स्यों केल किरन। सज्जन मिले ना विछड़े जे अमजन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है, कित विद मिलिया जाए, गुर कै शब्द प्रम कटी है अचिंत वसै मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन, हो तिनके बलिहारण है, मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है, वडभागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन, उर पूर्व होवे लिखिया गुर पाणा मन लेन। वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान, गुर पूरे वे खा लिया प्रभ आत्म राम पहचान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी मन वसे तित कट प्रगट होए। सब अंतरजामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सब थाए, मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए। बुरा कला चिचर आखदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए खाए, जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसपे आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताई, कृपा करें ता सतगुर मिले हर हर नाम से आई रहा। जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख देहे ताई ती राजा, दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाई। नानक गरीब कह पया दुआर है, हर मेल लहो वड्याई। अखी काड करी चरणा तल, सब करती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुझे अराधी, जे मार कढे बीत्याई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाई। जे तुद वल रहे ता कोई किहो आखों, तुद विसरे मर जाई। वार वार जाई गुरु ऊपर, पै पैरी संत मनाई। नानक विचारा पया दीवाना, हर तौ दर्शन कहताई। चखर चांगी मीह वरसै, पी गुर देखन जाई। समुंद सागर होवे बहुखारा, गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यों धरती सोब करे जल बरसे, त्यों सिख गुर मिल बिकसाई। सेवक का होई सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पै,
गुर मिल गुर सुख पाए। तू आपे गुर चेला है, आपे गुर विच दे तुझे त्याए। जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तुझ सेवक पैज रखाए। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर नेफल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई। पाला कत्तर वर्फ वर्षे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखूं गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

बिख्या कै संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कप पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजे महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे किवारा जान न पाये प्रभ दरबारा आशा अंदेशा बंद पराना महल न पावे फिर बेगाना सगल ब्याज कै वस्तर दीना फिर प्यास जो जल बिन मीना कछु सियान उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिये जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रब एक त्याए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवरना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदिया कारनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कभू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित्र।

नाम से आवे से जिन चले गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग जियो। हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसर तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया दरगह पैदा जाए जियो। ऐखे सुख मुख उजला इको नाम से आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो। खान समंतर रव रया सर्व जिया प्रतपाल जियो। सच खजाना संचया एक नाम धन माल जियो। मन से कबो न विसर जा आपे होए दयाल जियो। आवन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो। ताका अंत न पाइए ऊंचा अगम अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसर सो मर जमे लखवार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा जिन मन उठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रत्ते परमेश्वर बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्व में तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सुही महला पंजवा अष्टपदियां।

मैं कह न सका गुण तेरिया। सहिया कऊ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम निधान अपार पगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै। रहा मोह बाद अंकार सर पर नुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरक अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हा।

पहला कुचजी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचजी अमावन दोसड़े हौ क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे ओ जियो।

गुणवंती। जोदी सह गुर सिखड़ा तिस निर्निवला गो पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो, ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दर्शावड़ा, न लगे तत्ती वाओ जियो। हों आपको बोल न जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाओ जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हों रजा तृप्त आधाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा, तिस निव निवला।

पूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूरे आकर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण राण न मैले वैसे नानक मैं वर्षा चा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपाया करते कर पाया मेट न सके कोई जान जी ना रहने केवल रव रहा त्यो लोई माया निराशी रोए बिचुन्नी बाली बाले हेते नानक साथ सब सुख मैली गुरचरणी प्रभ जेते बाबुल दुखड़ी दूर ना आवे कर पई है बलराम जियो रहसी देख दूर फिर रावी कर सोई है बलराम जियो साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत पंख समाए राग सुही मेला पहला संत कर दूजा।

सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया अंजन मेल कया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजने आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया मंथन अमृत इन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत ते तू सकलो दाता सिर सिर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए काल विकाल कहे देवाने मन राखिया गुरु ठाए नानक अवगुण सब जलाए गुण संगम तब पाए।

कर हाथ न लै खड़ी तक्का, मैं मन चाओ कनेरा राम, मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा, दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुखना सा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सवाए, नाम साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

गुण संग्रहण सी खरी सरसी जहाँ रावी रंग रासे अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदाते तस्कर मार वसी पंचायण अजल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे।

प्रब दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसकी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपूरे सत्पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है ते लोआ सिर ताजा राम हों विषम कई देख गुना अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना ना वे ना जासी नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अविनाशी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सुई छंत महला पहला कर चौथा जिनकी आकिन देखिया जग तंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोब सेती पंच शब्दी आया जिनकिया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सू गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सू से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गहर है सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा कहो वे वासला कडवास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत पी जय गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय आप करे किस आखी है होर करे न कोई आखणता को जाई है जे पूलड़ा होई जे होए पूला जाए कही है आप करता क्यों फुले सुने देखे बाद कहे है दान अन मंगिया दिवे दान दे दाता जग विधाता नाम

सोई गुर की पौड़ी सास की साचा सुख होई। सुख सहज आवे सास पावे सास की मत क्यों टले। स्नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले। परपंच मोह विकार था के कूड़ कपट न दोई। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई। साहिब सो सालाही है जिन कारण किया। मैं लागी मन मै लिया किने अमृत पिया। मत अमृत पिया ए मन दिया गुर पे मोल कराया। आप नड़ा प्रभ सहज पछाता जामन सा फैलाया। इस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया। साहिब सो साल आई है जिन जग तो पाया। आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता। प्रीतम से मन मानिया हर से तीराता। साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया। पंच को नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवा।

कछ ना सूजे, अंध बूढ़ो तंदली, दिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वसे, कर जोड़ गुर पे कर बिनंती, राह पादर गुर दसे। मन परदेसी जेती है सब देश पर आया, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

इस तरह है गुरमहली कर अपने सो कर पुर लीना सेवक सेवा ता करे सत शब्द पतीना सब दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे।

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल न फुले। जय जयकार करे तुद पावे, गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख सोहेला हर त्यावो, गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे। बलिहारी गुर अपने बिटो, जिन कारे सब सवारे। हर प्रभु कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो। नानक कह सुनो जन पाई, सुख सोहिलड़ा हर त्या।

का हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा। साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई। हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए। दे जिस पूज हो वह हर जन की, जो हर हर नाम से आए। नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही। साजन आए उठे कर माही, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सुही महला तीजा कर तीजा, भगत जना की हर जियो राख है। जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे। हो मैं सबद जलाया राम, हो मैं सबद जलाया। मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी, सच्ची भगत करे दिन राती। गुरमुख आप लखाणी, भगता की चाल सच्ची अत निर्मल।

जो बोले जो सच करे सो होई, जय देखा ते सच पसरिया और ना दूजा कोई। सच्चे उपजाय सच समावे, मर्जन में दूजा होई, नानक सब कुछ आपे करता आप करावे सोई।

सच्चा सबक सच्ची है शोभा साचे ही सुख होई। साच रते भगत इक रंगी दूजा रंग न कोई नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवे

चित तन मैल न राती, हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए, अंजन रावे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया, अपने प्रीतम राती, नानक नाम मिले वडियाई, प्रभ रावे रंग राती।

आए रंग सोरलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने। नानक सुहागन सावड़ पागी जे चले सतगुरु भाई।

दूर वसै, इकना मन आधारो राम, इकना मन आधारो सिरजनहारो, वडपागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे अनद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो, काट कटे सबना विच एको एको राम कतारो राम, गुर सेवन सब गुरदाता हर हर नाम समाया राम, हर तूर देवो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गवाए निज कर पाया वासा।

बलराम जियो। अंतर ममता कूड़ कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन कके खाया। आपे दया करे प्रभदाता,

गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मंथन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अम दिन हर लिवलाई मन सिंधिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वधा।

खास शब्द लिवलाई, अंजन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाने, अवर न जाने दूजा। सब में रव रहा सो प्रभ अंकर जामी राम, गुर शब्द रवे रव रहा सो प्रभ मेरा स्वामी राम, प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, घट घट रव्या सोई, गुरमत सच पाये सहज समाये, तिस बिन अवर न कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा, आपे ले मिलाए, नानक सो प्रभ शब्दे जापे, एनस नाम ते आए। ए जगो दुतर मन मुख पार न पाई राम, अंतरे हो में ममता काम क्रोध चतुराई राम, अंतर चतुराई थाए ना पाई, बिरथा जन्म गवाया, जम मग दुख पावे।

पाथ न जाए। हो पूछो अपना सतगुरु दाता किन विद उत्तर करिए राम, सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौजल करिए गुरमुख नाम समावे, पूरा पुरख पाया वट पागी सच नाम लिवलावे, मत प्रगास पई मन मानिया राम नाम वढाई, नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवां।

हम मन तन देवा सतगुरु है मैं मेले प्रभु गुणता से तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबा से वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे गुरु सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हौ तुझ बाजू।

मन दर्द से चल चल परमिया, मन मुख परम कुल आया, नित आशा मन चितवे, मन तृष्णा भुख लगाया, अंता तन तर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक नाम।

सेव ठाकुर नाथ पराणा, सुन बावरे जो आया तिस जाना, नेचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जाए संत ना की जाए, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पावत।

पाई साचे सृजनहारा, जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सफल दस पेटिया गुरपुरा, नान सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया, बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अवनासी, गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ, नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जामिया। सत संतोख बजे वाजे अनहदा चुनकारे, सुन पै बिनासे सगल नानक, प्रभ पुरख करने हारे। उपजया तत ज्ञान सहुरै पई है, इक हर बलराम जियो।

रंग लागे, हर रंग अंधन जागे, हर रंग जागे पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ सबद सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नासे, रहस्य उपजय मन का।

वरदाना कर मेरा मत साई कृपा की जय सौ मत दी जय हाथ पैर तू त्याई गर्भ ना की जय रेण हो भी जय तांगत जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कण चेरी राम तुम गौहर अत गहर गंभीरा तुम फिर हम दोरिया राम तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो इतनी लोहरिया राम हो किछ नाही एको तू है आते आप सुजाना अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना चरण है सरनी दास है दासी मन मोले तन हरिया नानक ठाकुर सर्व समाना आपन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सिरंदे मन

जीवन जा तू पर्वत मेरा ओला राम हो बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर सो मन माना प्रभ जी पानी पई निकानी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हो निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूरी महला पंजवा साजन कोठ सतगुरु मेरा पूरा इस बिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पाना राम जियो पिंड सब किसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकी शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहारे नानक सर्व कुर्बाना ऐसा गुरु वड कागी पाये जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूड़ी नित नापे राम हर तूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बाहर जोन ना आई है गुर चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापे नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापे हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन्ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थाम थम कर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा दिहो मेरे प्यारे मुख हर आरा दे मेरा राम हर आरा दे जन पंख सा दे दुख न व्यापे कोई जल कल मैयल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाथे प्रभ नेर हूते नेरा नानक कौ प्रभ कृपा कीजे नेत्र देखे दर्श तेरा कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सो सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहत्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा कीजे हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे चरण चले प्रभ मार्ग राम पर सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार्ग राम पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महा विकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा कीजे मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम एहो रंग एहो रस होगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण पारम गोपाला सब किस तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा
कहो नानक प्रभु कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा। सूही महला पंजवा, हर जपे हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम। सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना, सगले पाप तजावे राम। हर जो गाय परम पद पाया, प्रभ की उत्तम बाणी। सहज कथा प्रभ की अति मीठी, कथी अकथ कहानी। पला संजोग मूरत पल साचा, अब चल नीव रखाई। जन नानक प्रभ कहे दयाला, सर्व कला बनियाई। आनंदा वजह नितवाजे, कार ब्रह्म मन उठा राम। गुरुमुखे सच करने सारी, बिन से प्रम पैच उठा राम। अमहद बाणी गुरमुख बखाणी, जस सुन सुन मन तन हरिया। सर्व सुखा तिस ही बने आए, जो प्रभ अपना करिया। कर में नव निद परे पंडारा, राम नाम रंग लागा। नानक जन प्रभ कदे न विसरे, पूरन जाके भागा। छाया प्रभ छत्रपत कीनी, सगली तपत विनाशी राम। दुख पाप का डेरा काठा, कारज आया राशी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया, साच कर्म पुन फलिया। सो प्रभ अपना सदा त्याई है, सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल में यल सोई। जन नानक प्रभ की शरण आई, तिस बिन अवर न कोई। मेरा कर बनिया बनपाल बनिया, प्रभ पर से हर लाया राम। मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याय साचा, सगल इच्छा पाया। गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वादाया। करी नदर स्वामी सुखे गामी, हल पल सवारिया। बिनवंत नानक नित नाम जपिए, जियो पिंड जिन तारिया। सुही महला पंजवा, पै सागरो पै सागर तरिया, हर हर नाम त्याए राम। बोथड़ा हर चरण आराधे, मिल सतगुर पार लगाए राम। गुर शब्दी करिए बहु न मरिए, चूके आवन जाना। जो किछ करे सोई पल मानो, तामन सह समाना। दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे, सुख सागर सरणी पाए। हर सिमर सिमर नानक रंग राता, मन की चिंत मिटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया, हर साजन वसगत कीने राम। आत्मड़ा मन आगे तरिया, सर्व सुखा कर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी, हर मंदिर थित पाई। अनग विनोद सिमरो प्रभ साचा, बिछड़ कब होना जाए। सावर कागण सदा सुहागण, राम नाम गुण चीने। कहो नानक रहे रंग राते, प्रेम महारस पीने। अनग विनोद कहे मित सखिए, मंगल सदा हमारे राम। आप न रह प्रभ आप सिगारी, सो बावंती नारे राम। सह सुभाए पय कृपाला, गुण अवगुण ना बिचारिया। कंठ लगाए लिए जन अपने, राम नाम उधारिया। मान मोह मद सगल व्यापी, कर कृपा आप निवारे। कहो नानक पै सागर तरिया, पूरन काज हमारे। गुण गोपाल गावो नित सखियो, सगल मनोरथ पाए राम। सफल जन्म हुआ मिल साधु, एक अंकार प्याए राम। जब एक प्रभु अनेक रविया, सर्व मंडल छाया। ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल फल मैयल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। एक दर्शन नानक बिकसे, आप ले मिलाए। सुही महला पंजवा, अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप बसाया राम। करते आप बसाया सर्व सुख पाया, पुत पाई सिख बिगाते। गुण गावे पूरन परमेश्वर, कारज आया रासे। प्रभ आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन एव थान सुहाया। कर मंदर हट ना ले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम।
संत भगत हर नाम आराधे कटिया जम की फांसी राम काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए सगल सामग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी सब सवारे सदगुरु पूरे नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ कया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर कृपाला। जय दिस पूर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाई कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज पगद पर कंजन अनहद बाजे सुनिए राम। अनहद चुनकारे तत विचारे संत गोष्ट नित होवे हर नाम आराधे मेल सब काटे किलविट सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना बोर न पाई है जोनी है नानक गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साध छुनी है। सूही महला पंजवा संता के कारज आग खलोया हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगल विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध दीने करते तोत ना आवे काई राम। खास खर्चक दिलचक सुख पाया करते की दात सवाई राम। दात सवाई निकुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिघन सगले उठना थे दुख न नेड़े आया। शांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूप सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार्य तिन ही किया मानस क्या विचारा राम। भगत सोन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे सात संगत संग बनी जिन उद्दम की आकाल केरा तिसकी उपमा क्या गनी। अखर तीरथ पुण्य क्रिया महानिर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक सगद आधारा। गुण निधान मेरा

मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हर संभल खत्ती जी ओ कदे ना बोले कौरा, कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान है अवगुण को ना सितारे, पति कौन हर बिर सदाए एक किल नहीं पन्ने काले, खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा, नानक दास वा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा, हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा, मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग सारा, प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा, जिस जेवल अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रव्या, जल थल मैयल सोई, चरण कमल जब सागर तरया पग जल उतरे पारा, नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा, हर निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो, गुर सतगुर कहया जी।

जाए परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नित स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सुहै वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए तिस छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग सुद पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर राव्या हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आत्मेली कर पार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सं सदा समाल नानक जन्म सवार अपना कुल भी छुट्टी नाल। कौड़ी आपे तक प्रचायन आकाश पाताला हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाएदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाएदा तेरा हुक्म निराला। आपे आप वर्तदा आपे प्रताला।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सो न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मेल है सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में तूट सब विनस जाए जो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीर सचड़ाओ उल्टी सकत स्वे कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने।

सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए। इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए। मुंद ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए। सर्व सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए। नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई। तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजे परमाई। मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए। जो तिस पावे सो थिए सब चले र जाए। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखणी। जो प्रभु छोड़ पर पुरख करे प्यार। उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर। जिस पूरब होवे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार। सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार। पेये सहरे बहु सोभा पाए तिस पूज करे सब संसार। ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सिरजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार। सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इहु जग आप उपायन कर चोज विधान। पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान। आवे जाए को आइए मन मुख अज्ञान। इक ना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान। भगत खजाना बख्शियोन हर नाम निधान। श्लोक महला तीजा सूहिए सूहा वेश छड़ तू तातिर लगी प्यार। सूहे वेश तिरकिने न पायो मन मुख दज मोई गवार। सतगुरु मिले सूहा वेश गया होमे विचो मार। मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार। सदा सुहागन सबद मन पै पाए करे सिगार। नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सूहा परहरो लाल करो सिगार। आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार। मुंड सुहावी सोहनी जिस कर सहज पतार। नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूर कुटंब है मन मुख मुग्ध रता। हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता। सिर उपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता। फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता। जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए ना आखियन जो मड़िया लग जलन। नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन। सेवन साई अपना नित उठ संभालन। महला तीजा कंता नाल महेलिया सेती अग जलाए। जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए। नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए। पावे जीवो कै मरो दूरो ही पज जाए। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करते लिखिया। नामे जेवड होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया। नाम अकुट निधान है गुरमुख मन वस्या। कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया। श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विकार। चलन सार न जाननी काज सवारन हार। महला दूजा रात कारण तन संची है पलके चलन होए। नानक नाल न चली फिर पछतावा होए। महला दूजा बब्बा चक्की जो करे ना गुण ना उपकार। सेती खुशी सवारी है नानक कार सार। महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपई
जे बहुता काले परख जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे। पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई आपे सिष्ट उपायन आपे फुनगोई। जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाह।

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हो मैं मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंडक मारिया लग पे गवारी जिनकी एक से ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया को बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिंगार कबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ कौ नानक तो करे महला तीजा काजल फूल कंबोल रस ले तन किया सिंगार सेजै कंत न आयो एवं पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखा रंग सिउ हो मैं तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह आप खड़ोवे आप कर आप पीने आप आहो गुरमुख सेवा थाए पवे उन मन तत् कमाहो मस्तक लहो मजूरिया मन मन खसम दराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बिबे थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म

नानक एहो पन जाल जिन जले नाम विसारिया पौंदी जाए कराल पिछे हक नाम बड़े तित निबंधे ताल महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत ना आवही किती लास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच कुरमान सदा ने चल रव रहा सो कृप सुजान गुरु प्रसादी सेवी है सच सगद निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे दूजी कार है लग्या फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर के सब सलाइए।

पहला दूजा जा सुख पासर आवे हो दुख भी संभाले होए नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंक सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छाई नानक वे प्रभाव है तिस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर के इको अंकार सतगुरु प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न ना कभू लीना राम ना जपो कवन मत लागे मर जाए वे को क्या करो अभागे रहा दुख सुख करके

सूही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रहन गई मत दिन भी जाए पल गए बग बैठे आए रहाओ काचे करवे रह न पानी हंस चलिया काया कुमलानी क्वार कन्या जैसे कर सिगारा क्यों रलिया माने बाज बतारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सियानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तै खटिया कहां गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगे का आया रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी लेओ निबेर आज की राती किछ भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गुजारो साध संग जाको हर रंग लागा तन तन सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया पया कराया कहो कबीर तेई नर फूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी एक ना खाक समाया बावरे ते ज्ञान विचार ना पाया बिरथा जन्म गवाया रहाओ तब लग प्राणी तिसे सरेवो जब लग कट में सासा जे कट जाए ता पाऊ ना जासी हर के चरण निवासा जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान कजे अवगत को तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया तिन्हों लिया उबारी रहाओ नौ दाडी दस नु सवतावे रैयत बचन ना देही डोरी पूरी माँ पैना ही बोगस काला ले ही बेहतर कर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सो दिया बाकी रिजम न काई संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा का नाऊ विवेको राग सूही बाणी श्री रविदास जियो की इको ओंकार सतगुर प्रसाद सह की सार सुहागन जाने अज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे ना अंतर राखे अवरा देख ना सुने अपाखे सो खत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई रहो दुखी दुहागन दोए पख हीनी जिन नहा निरंतर पगत ना कीनी पुर सलात का पंथ दुहेला संग न साथी गमन इकेला दुखिया दर्दवंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानू त्यों करगत मेरी सूही जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूछ रहन फिर नाही संग चलत है।

तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट की तरहार चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सुमार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया पनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यो तन ऐसा जैसे काश की ताटी, जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंग सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उन्हें तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सदै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको अंकार सतगुर प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

तें साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण कोई पाछे पछतानी रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विद्धन कुही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बो पीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, से फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करन दुहेला। हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक पापी ने पतली सह केरे बोला, दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए न मेला। कै फरीद सहेलियो सहो अनायसी, हंस चलसी डुमना।

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल पर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध।

तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे पान तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचिक तू अलग अधेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार ऊंदी कामन कामन यार राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चांदन अंधियार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोई बाप दिसे वे जात न होए एक एक को ना ही सौ कोए करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से मारिया ठाक रहे मन साचे तारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला। गुरबचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम फुले बौराने हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जियोरा रह न सके खिन सतगुर बूझ बुझाई। रहाओ मेरा प्रभ विसरे हो मरो दुखाली सास दिरास जतो अपने हर पाली सब राजन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कही गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हमें लेट चले गुर शब्द समाए। मन मुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा हर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग छाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहस्यों जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ न गई लिव लागण जिन हर के चरण सारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तें दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दयापत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख वखाने। गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही न जाई सत्य आप सवारे परम फुलाने से मन मुख कहिए ना उर्वार न पारे। जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माय निस्तारे नानक पाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा। अतुल्य क्यों तोले आ जाए दूजा होए कौन सो जी पाए किसते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए। गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुबदा जाए। रहाओ आप सराफ कसवटी लाए आपे परके आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए। माया का रूप सब चिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिस आए सब सच दिखा लेता सच समाए। आपे लिव पात है आपे आप बुझाए आपे जाते आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा। साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब में एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना जिस कर्म हो वैसो सतगुर पाए अंदिन लागे सहित्याना। रहाओ
क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे अभिमाना, जब अपनी जोत खींचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुरु चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तिन्हें कोई चाल है, जो हर पावे भगवान। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे कामा, इक ना कर मैं देवड़े आई, इक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा फाद बनाया पूरे, वेखो एक समाना, इस प्रपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को करो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माए समाना, ए बाणी जो जियो जाने, इस अंतर रवे हर नामा। रहाओ चौं जुगा का हुन वेड़ा, नर मनुखानो एक निधाना, जत संजम तीरथ कोना, जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा, जुग जुग आपो अपना कर्म है।

कैद सुनत सबे सुख पावे मानत चाहे निधाना बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल मारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हों तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाए हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए। हर जियो आग बसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए। गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए। निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए। यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सतरा ते तिन बहुत ना फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई। हों में माया शब्द जलाई दर फाते गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनुभ होवे मन मेरे। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई। जीवन मरण को संसार वेख है बहु न मरे ना जम पेख है। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान। सद ही लागा सहत्यान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरु ते नाम से आई। जह देखा तेरे समाए सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया। गुर का शब्द अत मीठा लाया नानक कृष्ण गुजी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इक ओंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामे ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो हर वाक्यो हर सरना। कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित पवन्ना। ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हर उद्रे करे ओ सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पव कारण हम पापी रात कपना। हर दासन दास दास हम करियो जन मानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा। हम मूरख मुगध अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम है रामा गुरमत हर रस पाये होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जतिये वड्डे करम्मा। नामहीन त्रिग जीव ते तिन वड दुख सम्मा। कोय फिर जोन पवाइये मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड परमा। गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा। तुमरी सेवा कर न सकते हैं प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे जो संग पासत लोह तरा। साकत न होची मत मद्दम जिन हर हर सेव न करा।
ते नर पाघीन दोचारी होए जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल मेला चौथा, आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम दोहे थे कल जुग खेवट गुर सबत करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिप्त लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाये उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा, खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार जम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नी। अपना पला सब कोई बात है, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। अन दिन हर हर नाम से आवो, गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी, हम जंत तू पुरख जंत रहनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यो पावे त्यों बुलैनी। बिलावल मेला चौथा, अनद मूल से आयो पुरखोत्तम, अन दिन अनद आनंदे। धर्म राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बदिक, विच माया फिरे फिरंदे। कृष्णा जलत किर्त के बादे, ज्यों केली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरते, जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग बिलावल महला चौथा, पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम पतित पावनो, हर संत भगत पारनो। हर पर पूरे रहा जल थले, राम नाम नित गाये हर दुख विसारनो। राव हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसारन हारा। गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता। मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा। पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निराशी। सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक किस पगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा, चौक दे घर पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, नदरी आवे किस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे। कर कृपा मोह मार्ग पावो, साफ संगत के अंचल लावो। क्यों करिए दिखिया संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाओ परम चुलारे माया दे, हर के पगत सदा फिर से। हर शोक से रहे निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्व पुयंगा, हऊ मैं पचे दीपक देख पतंगा।
सगल सिगार करे नहीं पावे, जा हो कृपाल तो गुरु मिलावे। हाँ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर कुसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल, जिन चाखिया तिस आया फाग, जो गूंगा मन में विस्माद, अनद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल मैला कन्या सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्पा वेव, तरत पुनीत सही गुण गाए, दुर्त गया हर नाम ते आए। रहाओ सबनी थानी रवे आप, आज जुगाव जाका वड़ प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाने मूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रभ पाले। बिलावल महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोए अनाथ तुरी शरण आई, पर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोए निर्गुण लीजे लड़ लाए। रहाओ प्रभु चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभु बसे। प्रभु का नाम मन तन आधार, विसरत नाम हो संसार, प्रभु चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम अवताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, विसर गई सब दुर्मत रीत, मन सन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा कर दूजा, या नड़िए कह कर गावना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्यान का बिरथियां प्यारे, राखन को तुम एक। रहा सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला, सफल मूरत गुर देव स्वामी, सब कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम अरादे नाम वखाने, हर नाम ही मनवाता, सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे, संत संगत जिना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल, मने होए प्रगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जम की काने, तिना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाने। पूछ अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे, दिन से पाप नेरे, पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी शरण आई, सदा सदा बलिहारे। बिलावल महला पंजवा दिखे बन फीका त्याग रि सकिए, नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी ना होत जियो, मान महक ना सकती पाई, सादा दासी कियो, नानक से दशोभा बनते, जो प्रभ अपने कियो। हर चंदोरी चित क्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग ना चालती सखिए, अंत तज जावत माया, रस ओगण अतरूप रस माते, इन संग सूख न पाया, तन तन हर साध जन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड़ पागनी सखिए, संता संग समाइए, कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे, चरण कमल लिव लाइए,
तह जन्म न मरण नाम जाना, निचल सरनी पाई है, प्रेम बिचो न मोह व्यापै, नानक हर एक से आई है। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे, रतले सह सुहाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम, अर्ग मंगल गुण गाए। सती सहेली राम राती, मन तन इच्छु जाए, नानक अचरज अचरज सो मिलिया, कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा, एक को उतार सतगुरु प्रसाद। एक रूप सगलो का पारा, आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए, जप जप जाइए तप दिश पाए। रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभु सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा। आप उपावन आप सुधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना, आपन विपो आप ही जरना। रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल ना जाई चलना, आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप लिखना, आपे अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल महला पंजवा। तूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वड़पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे,

बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्न सागर बूढ़ खून सारा, नानक बहा पकर सतगुरु निस्तारा। बिलावल महला पंजवा। तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन। रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नाम सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मंत्र ताना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबं कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरा वड पागी पाईए, मिल साधु हर नाम त्याईए, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभु कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा। गुर का शब्द हृदय में चीना, सगल मनोरथ पूरन आसीना, संत जना का मुख उजल कीना, कर कृपा अपना नाम जीना, रहाओ अंध कूप से पर गह लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभु पय परसीना। बिलावल महला पंजवा। सगल मनोरथ पाई है मीठा, चरण कमल सो लाई है चीता, हूँ बलिहारी जो प्रभु त्यावत, जन्म बुझे हर हर गुण गावत। रहा सफल जन्म होवत वट पागी, साध संग्राम में लिव लागी, मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरो परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अनंत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला।

चरण कमल प्रभु के नित्य परम सुमत प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, हर नानक बिसरना चाहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभु हृदय से आए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अटक कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांत पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत तिल विनाशे। अनंत करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल। दिन दिन छिजत विकार करत, औद फाही फाथा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभु दीन दयाला, महा विकम सागर अत पारी। उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। काम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया, सात जना होए कृपाला दिक्षे सब परवारया। कारज सतगुरु आप सवारया, बड़ी आरजा हर गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारया रहा, वंश ऋण त्रिभुवन हरिया होए। सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का पैसो काल रहाओ। साथ संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू कै जंजाल।

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छड़ जाए। तुमरी कृपा से छूटी है बिन से अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जत तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना वड़।

मत फूलो मानुष जन्माया परमाया, नानक तुस पत राशी जो प्रभ तहराया। बिलावल मेला पंजवा। माती ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे, क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे, प्रभ तज रचे।

छोड़ उतर पंच प्रभ सो रचो तज कूड़े नहे। जिन अनक एक बहु रंग किए है होशी एहे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत लेहे। ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास, सब ऊपर समरथ प्रभु पूरन गुण तास। जन का नाम आधार है प्रभु सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करनहार जो कर रहा साई वडे आई, गुरपुर उपदेशया सुख समर जाय। चिंत अंदेशा गणत ताज, जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए।

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रतापे। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल पोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श तेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभु के पावो, देव सुहनी साध कै बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए बिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तू सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई

अगन सागर के काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुरु पहे सहाय, जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हो आ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नगर निहाल, गुरु पूरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहा औषध हर का नाम है जित रोग न व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख न जाते, हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलक उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई, सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत, गुरपुरा जिस पेटिया

अपार मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार चरण कमल से रंग लगा अचरज गुरुदेव जा को कृपा करो प्रभु ताको लाओ से निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद नानक कभो न विसरे प्रभु परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा सित पाई अनद भया।

रहाओ। सोवत हर जप जा गया तोथिया समाद की अमृत तृपाश्या तांका अचरज स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर पगता का आश्रय।

मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया, तुमरी प्रतीत महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा हर का पैथर तो छुटे, जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड सिमरे नाही, जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत, तिस्यों तेरा तेद।

निष्करता करे काम को काटे, कीरी के हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रविय हर मृत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंधते नानक गुर काड। बिलावल मेला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग, जागन के सुपना भला बसिए प्रभ संग रहाओ। वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत्व ठाकुर अविनाश, ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर, सो अंतर सो बा

प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास। रहाओ विघ्न ना को लागता गुर कै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। कोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। बस कमावत सब सुखी किछ ऊन न दिसे, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूरन जगदीश। जय जयकार समय करें सत्थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा। हर हर हर आराध्य होइए आरोग, रामचंद्र की लष्टता जिन मारिया।

और उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हारे राख्या अपनी करमया रहाओ। बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याय है, किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी है मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे, राम नाम जो जन जपे हम जिन सब जागे, पंथ मंत्र नह जोई तित चाप न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन रस

तो कुछ नहीं करना, दुख ना लागे कदे तुद, पार ब्रह्म सितारे जम कंकर नेड़ ना आवे, गुरसिख प्यारे रहाओ। करण कारण समरथ है किस बिन नहीं होर, नानक प्रभु शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभु अपना, नाथा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साथ संग, ताके बहुर ना पाओ। बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ, अनद सुख मंगल बने पेखत गुन गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद तुन इह बनियो सुआओ, नानक प्रभु सो प्रसन्न भए बाँचत फल पाओ। बिलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नाश, चरण कमल का आसरा प्रभु प्रभु गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कर सास रहाओ। मात पिता बंधक तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा, सर्व सिद्ध हर गाय सब पला।

जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र में प्रभ गुनी दहीर, नानक भगत आनंद में तेज प्रभ की तीर। बिलावल महला पंजवा। अरदास सुनी दातार प्रभ हुए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक चारे। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या दे अपनी हास रहाओ। जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। पूछ अपार अगणक हर सब जी जिस हार।

शीतल भय राखे प्रभ आप, नाम प्रभ शरणागति जाका बड़ प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ नित दया रविया नित राम, साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार।

अरदास जानी तुम अंतर जामी खान खनन कर लाव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताकी बाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई राम नाम औखद दिया।

पाप दंडोत बंदना अनेक बार जाऊं बार है रहाओ उठत बैठत सोवत जागत ए मन से जय चितार है सुख दुख इस मन की दुर्था तुझी आ जय सार है तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करो सोई तल हमरे तेख नानक सुख चरनार है बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण मोह मगन पति संग प्राण।

दात आख पहर गुण गावत प्रगट काम क्रोध स्तंभ के जात। त्रिपत अघाये पेट प्रव दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभ तेरी।

सब हरजन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की कृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तै बिलसे पहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सब गुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारा संसार रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा चौक दे दुख दे कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिनसो अंधकार तिहि मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ विस्मन विषम पे जो पेखियो कह न जाए वडियाई मगन पे उहां संग

एक कह अपर अपारा, एक विस्थिरन एक संपूरन, एक कह प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर कामना आवत है, जासियों राज माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस त्रेरियो, बिखे ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज सवारियो, पावक तने जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाडे, केस गहे फेरावत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी ज्यो पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान कंबोली। रहाओ सहज समायो, गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, त्रै मुख लागो जो वडकागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, पोत पोत अंग अंग संग।

गोविंदमई। जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा। पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांत दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अंकारा, तंते होए सगल खई। सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते ए मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे, वर्ण न साके एक रोमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथी है किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित एक निमख जताई है। अचरज सुनियो प्रापक केतले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, को किसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी, तंग बंद हर सगल जंजारो। अवर काज ते छूट परी रहा, सुख सहज हर कनो आनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, देखियो मोहन सब कै संगे। पूर्ण न काहू सगल परी, पूरन पूर रहो कृपा निद। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे।

दुख परिया आठ पैर चितवे नहीं पहुंचा, बुरा चितवित मरिया। निंदक प्रभु पुलाया काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरिया। नानका राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करिया। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे करें करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परे प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे काडे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै अनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहा, त्यानप ते सब पई स्यानप। प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोस है, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय मैं दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहा, निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा। प्रभु मेरे का बड़ प्रताप, सिमर सिमर सिमर सुख पा।

महला पंजवा सदा सदा जपी है प्रभु नाम, जरा मरा कछ दुख ना व्यापे है, आके दर्द है पूरन काम रहा, आप त्याग परिय हित करनी, गुरते पाय हो निधान, जन्म मरण की कटिया फांसी, साची दर्गे का निशान, जो तुम करो

मन तन अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत पर उपकार नित, किस रसना का मोड़ किस नाही रहाओ। कुल समूह उदरे छिन कीकर, जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के गोहित पाए, पव सागर पार पर आही। संत सेवक भगत हर काके, नानक मन लागे है काही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा। तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साज कैसंगा रहाओ। छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीच ते तहरा जंगा। कभू न बिसरे हिये मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल। मन तन अप रखो हर आगे, सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ। शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल। कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न काची बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल। नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिलेरवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भये। साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहाओ। जेते पुनः चरण से कीने, मन तन प्रभ के चरण गहे। आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपो होए पजो जगदीश, तुह पदार्थ बड़ काज लहे। कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात। सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पात रहाओ। काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक। मंदा चितवत चित

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

सूरे हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे कारज हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे।

सतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जाते नान प्रीत लाई प्रवापे। बिलावल महला पंजवा पन पन जोबन चलत गया राम नाम का पदन ना कीनो परत विकार निष्कोर पया रहाओ अनेक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया।

कंठ लाए राखे जन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल। कहो नानक मेरे।

पंजवा आगे पाछे कुशल पया गुर पूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु की नी माया रहाओ मन तन रव रहा हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज अनंत गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना विचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरे हर की।

नहीं आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे।

उलझियो अल मकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे एक कह हर लाहे अन से टूटी है रिख से छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मैला नावा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पाए जी जानो रहाओ।

0: आवे।
1: जोग जग ने फल तुम मानो जो प्रभ जस बिसरावे। मान मोहे दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे। कहो नानक ए विद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। बिलावल मेला नामा जा में पदन राम को नाही। तेहि नर जन्म अकार खोया यह राखो मन माही राव। तीर्थ करे व्रत फुन राखे ने मनुआ बस जा को। नेफल कर्म ताहे तुम मानो साच कहत मैं जा को। जैसे पान जल में राख्यो ते दे नाहे ते पानी तैसे ही

सब कोई कत कत बात करे दुख होई कत सहने ते रहे न कोई दिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहे साचा मन सोई मन मुख कथनी है पर रहत न होई नामो पूले थाओ न कोई मन माया बंदे हो सरजाल कट कट

नानक कहे अवर नहीं कोई। बिलावल मेला पहला मन का कहे आ मन सा करे यो मन पुन पाप उचरे माया मद माके कृपत ना आवे कृपत मुक्त मन सा।

पढ़े नाटशाला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुखतिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच्छ नीच चंडाला, गुर के मुँह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया आये जाए।

जाने सब किसका तन मन अर्प है एह जिसका ना ओ आवे ना ओ जाए नानक साचे साच समाए बिलावल मेला की जा अष्टपदी कर दसवां।

आप न बुझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले कहनामी।

गुरुमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते।

नानक जंत बजाए वाजे जित पावे तित राहे चलैया। बिलावल मेला चौथा। गुरुमुख अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया।

मैं अकथ कथैया मनमुख माया मोह व्यापे इहु मन तृष्णा जल तिथैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया इहु मन नाचे सतगुर आगे अनहद शब्द तुन

पिन पिन टह कहिया, हर सर सागर हर है आपे, इहो जग है सब खेल खिलैया, जो जल तरंग जल जल है समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मेला चौथा, सतगुर परचय मन मुंद्रा पाई, गुर का शब्द तन पसम दृढ़ैया, अमर पिंड पै साधु संग, जन्म मरण दो मिट गैया, मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करो मद

मन मांगे रिद सिद्ध चेतक चेत कैया त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध कैया अंडज जेरज सेत जुत पुज

औजात रविदास चमियार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया, संत जना की हर पैज रखाई, भगत वचन अंगीकार करैया, नानक शरण।

बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट

ब्राह्मण कर हर प्रभ लहिया, भगत वचन ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे तैया। सीमा सिदार करे प्रभ खुशिया, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट।

नैया सतगुरु दया करे प्रभ मेले मैं तुस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मन तन इक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद न कहिया वैदक नाटके देख पुलाने मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया हौ खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम जो बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे हौ किस बिटों बल बल कुम गैया

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभ आए मिले खिनटील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कह कर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे को

चोटा खाए, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पखंड कीने मुक्त ना होए। आपे सच की आकर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन को थाओ।

पंचभूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाखे सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दर कर साथ।

तिस में मनुआ रेहा लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाव नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा।

जोग दसवीं नामदान इसनान औं दिन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान सच मैल ना लागे परम पाव पागे।

नाथ खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौथे थावे ले पावे, राज तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे। चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए।

आए, जिस देवे तिस पल्ले पाए, अगम अगोचर लखिया न जाए, गुर कै शब्द हर रया समाए।

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुभाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पेते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रव एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर सेवै सो जन बूझे, होमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वत है अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर

मार न सा कह कोए जिस दा साहिब डाडा होए किसनो मार न सा कह कोए साहिब की सेवक रह शरणाई आपे बख्शे दे वड्याई किसते ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका होए गुरमति सांत वसै शरीर।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। दिन वंश नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा हर रतन विसाराम।

एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभु ते कर बिनंती मिले हर जस ला बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह।

मिल एकत्र हुए सहजत हुए मन प्रीत उपजी मांगिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेले सब कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभ कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत पूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे बाजे अहं मत मन की त्यागी बिन वंत नानक शरण स्वामी संत संग लिवलागे।

वो जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाल दिखावे। ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे। गृह बने तीर वर्त पूजा बात काटे जोनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंधले तोहनी। मोहे अनाथ प्रे अनाथ जो जानो क्यों रखो चतुराई मोहे नाहे री जावो कै मुखो। मैं चतुर सुगर सुजान।

सगल जा को करना पत गतिन लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो। मुल मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोए चात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है मुख पर है हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते कीत चित हो मित अंगारे जो आख चकवी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे। तन तन हमारे पाग कर आया तिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कवन रसना।

सुंदर सांस दयाल प्रभु सर्व सुखानिधि पियो सुख सागर प्रभु केते है नानक सुखी हो त्यो जियो संत सुख सागर प्रभु पाये जब हो वे पागो राम मानन मान बन जाइए हर चरणी लागो राम छोड़ से

गुरमत बुद्ध त्याग राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम। सो प्रभु तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम। पति पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरे बल गये दिल चारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम। ब्रह्म मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टाक्रम पसमा राम। लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हौ मैं दुख त्यागन राम। ईत ऊत मैं डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नानक प्रभु शरणागति जप अनंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम। वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम। बहा पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम। क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम। सुमर सिमर नारायण पय पार जरामी राम। गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम। नानक

इस युग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना की किया, सबल ना लगो पाओ, हो मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे।

जे वस्त मंगिए साई पाइए जे नाम चितलाइए गोहज गल जीव की चीके सब गुरु पास ता सर्व सुख पाइए गुर पूरा हर उपदेश दे सब दुख ले जाइए जिस पूर्व हो वे लिखिया सो हर गुण गाइए श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए हर रस की संतोष हुआ सत रसिया मन आए सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दैज पकड़िया गुर कैसे सुवाए नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छुपाए महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जहाँ को नदर करे मानस के देवते पड़े सच्ची पदक जिस दे हों में मार मिलायन गुर के शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करते आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यो बने आई जे गल करते पावे सा नित नित चले सवाई सब चक चक मरे लुकाई श्लोक महला तीजा रुग ए आशा दूजे पाव की जो मोय माया चितलाए हर्ष पल्लर से आ गया नाम विसार दुख पाए मन मुख अज्ञानी अंगले जन्म मरे फिर आवे जाए कार्य सिद्ध न होनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए नाम रते जन सदा सुख पाए न जन नानक किन मल

जिस बख्शे करतार, नानक गुर प्रसादी यो मन ता तरे जा छोड़े अहंकार। आसा मनसा मारे निराश होए, गुर सबदी विचार पौड़ी, जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई, अगे सब आपे वरदा हर सच्चा न्यायी, कूड़ियारा के मोख तिकिए सच भगत वध्याई, सच साहिब सचा न्याओ है सिर निंदक साई, जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा, पूरे पाग सत गुर पाइये, जे हर प्रभ बख्श करे तो पावा सिर उपाओ है नाव प्राप्त होए। अंदर शीतल सांत है हृदय सदा सुख होए, अमृत खाना पहनना नानक नाए वडियाई होए। मैला तीजा, तू मन गुर की सिख सुन।

किए जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिए सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के वल है तुम सब वर्ण चारे खानी सब सृष्टि को लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए श्लोक महला तीजा अंदर कपट सभा दुख है मन मुख ध्यान न लागे दुख विचकार कमावनी दुख वर्ते दुख आ गए कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम नि लागे नानक सहजे सुख होए अंदरों परम पौ पा गए महला तीजा गुरुमुख सदा हर रंग है हर का नाव मन पाया गुरुमुख देखन बोलना नाम जप सुख पाया नानक गुरुमुख ज्ञान पर गास्या सिमर अज्ञान अंधेर छुपाया महला तीजा मन मुख मेले मरे गवार गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार पनत नानक सो जन पाई सतगुरु से वो हो मैं मल जाई अंदर संसा दूख व्यापे सिर तंदा नित मार दूजे पाए सूते कमो न जागे माया मोह प्यार नाम न चेते शब्द न विचारे तो मनमुख का विचार हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव किसकी मोहताजी लोक कटदा होर को हट ना वत ना वेसाओ भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास ले वे मुख पट पाओ हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जागाती किना नेड़ न जाओ जन नानक हर नाम तन लग्या सदा वे परवाओ श्लोक महला तीजा इस युग में पगती हर तन खटिया और सब जगत परम पुलाया गुर प्रसादी नाम मन वसिया अंगिन नाम के आया दिखिया माए उदास है हो मैं शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सत्य सो लिव लाया ब्रह्मा विष्णु मां देव त्रै गुण पुल्ले हो मैं मोह वधाया पंडित पर मोहनी पुल्ले दूजे पाए चुकलाया।

अवर न कोई गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खट्यो से देवालिये जुग माहे कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करे अपनी प्रतीत फोन सगवादी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करे सो तन चुगली हथ ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुच्छो कर्महीन ले न सके। होर थे देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला चीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विच्चों जाए। जो किस हुए सो सहजे हुए कहना किसु न जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए। मैला कीजा काल मार मनसा मने समानी अंतर निर्मल नाओ। अंगन जा गए कदे न सोवे सहजे अमृत प्याओ। मीठा बोले अमृत बाणी अंदिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया। जो किसे क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले। अक्के कोई क्यों देवाए इहो हर तन जोर की तै किसे नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुरु नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हथ आवे। जिसनो करते तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही। किसे कैसी बन्ने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे। किसका मोह हर चौ कुंडा विच काला कराया। हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना।

नानक जो पावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया।

पंच चोर तिना कर मोहन हौ मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मती हर रस ना जानन जिन्नी अमृत परम लुटाया विक्षो रचे रचन दुस्ता सेती तिरहड़ी जंक्षो वाज करन नानक साकत नरक में जम बजे दुख सहन पये किरत कमाऊं दे जीव राखे तिवे रहन मैला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया तान निताने तिस साथ गिरास सदा मन वसै जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभु वसै हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से।

हर प्रभु सच्चा सोहेला, गुरमुख नाम गोविंद, अंजन नाम सलाहना, हर जपिया मन आनंद, वड पागी हर पाया पूरन परमानंद, जन नानक नाम सलाहया बहुर न मन तन पंग। पौड़ी, कोई निंदक होवे सतगुरु का, फिर शरण गुर आवे, पिछले गुने सतगुरु बख्श ले, सत संगत नाल रलावे, जो मी उठे गलिया नालिया टोबिया का जल जाए पवे, विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होई जा।

तनवंता अर्मिल तन मनी पापी कसुना कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना पढ़ो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंग राता बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे करो पौजल निरपारी राख राख मेरे दीठला जन शरण तुम्हारी राव बिखे बिखे की बात ना तजी न जाई अनत जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहूँ कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी तुम संसर नाई दयाल मोहि संसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजे हर हर रस लपते हो हमारे कुल कौने राम के हो जब की माला लई निकूते तब के सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए यह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाशक नख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लय उदरयो बिलावल को हर समान नहीं राजा एक ऊपर सब दिवचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसार क्रम क्यू को रूप है लाद निवाजा बिलावल राख लो हम ते बिगरी सील कर्म जब पगत ना कीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची एकाया तो मिथ्याता की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोय साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए गिनती सुनियो मत कालो जम की खबरी बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार कुछ दिन सुर्ख करे को मेरी दर्शन जी जय खोल के वार रहाओ तुम तन तनी उदार

संसाधारी क्रम कै पाए पवे तेत पारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पद बवरे राव जिन तू जाचे सो त्रिगुण भोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन कहा करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद फन्नी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या खेती क्या लेवा दई परपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप रे मन हर पाजी परम सजो जग जीवन राम रहाओ आवश्यक न दी सही न दी सह जात जय उपजय दिन सह तही जैसे पुरवन पात लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समान्या गुरु साची जागी रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माए त्यागी आप आपते जानिया तेज तेज समाना कौ कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निजता कै सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब ए मत जाओ सब मैं पेखे कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके ले नरजा मन तोले देव जे ओ जाए तही सुख पावे माया तासना चोले देव कह कबीर मेरा मन

दारिद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, अस्त दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। तू जानत

बिलावल जे कुल साध बैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ। ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए। तन सो गाओ तन सो थाओ तन पुनीत कुटम सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिखोए। पंडित सूर

वे महला चौथा कर पहला। जी मन चित आस रखे हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीव वरते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाये। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय साले फल आस सब बिर थी जाए रहा। जो दिसे माया मोह कुटा

सुन में चूट दिन सब जाए। मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो सुन में किलिक सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब दुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह न

अपनी दिशा बहुत बहुत कदाचार अपनी दिशा कहूँ हर अपने स्वामी पे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी दिशा अवरा पह कही है अवरा पह कह मन लाज मरासा जो संसारे के कुटुंब मित्र पाई दी से मन मेरे ते सब अपने स्वाई मिलासा जित दिन उनका स्वाव हो ना आवे तित दिन नेड़े को ना चुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुझ उपकरे दुख सुखासा किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा हर जप मन के गुर उपदेश ले जा तो तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अन दिन नाम जतो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा गौंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांप शीतल मन अपना जैसे सतत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना शब्द पछान राम रस पावो ओ उत्तम संत पयो बद बदना इस जन की वडे आई हर आप वधाई ओ कटे ना किसे की कटाई इक तिल

हर अविनाशी सदा फिर नहीं चलत मेरे मन पद परवान। मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर महल पावे गुरबचनी तिस जेवड अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, त्यों सत संगत मिल पतित परवान।

सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है, हर दिन को मार जीवाल न साथ है, ता मेरे मन कायत कड़ी है। रहाओ हर पर पंच किया सब करते, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूरे हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो किस पासों मन क्या चो रही है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैव सब चित सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौन महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यो त्रिखावंत दिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर तब जान।

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुरु की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सा

परलोकर्ता, व्यापतकर्ता, अलिप्तोकर्ता, वक्तोकर्ता, बूजतकर्ता, आवतकर्ता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा। आंक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहो कुसुम भाए ले, पग पारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़।

तू लाग पड़े कुटुंबाए ने, जो पंखी कत्र होए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चाय ने, जैसे मीन रसन साध बिन सो।

आज बर्तन को सब कुछ भोजन पोगाए, सो प्रभु ताज मूड़े कत जाए। पार ब्रह्म की लागो सेव, गुरते सुजय निरंजन देव। रहाओ जिनकी ये रंग अनेक प्रकार, ओ तट पर लो निमक मझार। जाकी गत नित कहीं ना जाए, सो प्रभु मन मेरे सदा के आए। आए न जावे नेचर तने, बेअंत गुना ताके ते तक गने। लाल नाम जाके परे पंडार, सगल कटा देवे आधार। सतपुरुष जाको है नाओ, मिटे कोट अग्निमख जस गाओ। बाल सखाई पगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत। कौन महला पंजवा।

नाम जपत मिटे पाप कोट, रास दी हर एको नाम, मन का इष्ट गुरसंग ध्यान राव। नाम हमारे जी की रास, नामो संगी जत कत जात, नामो ही मन लागा मीठा, जल थल सब में नामो दीठा, नामे दरगे

सगल पूछे को करता दान, गर्भ कोर में राखन हार, इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए, कट अवकट जत कट है सहाय, रहाओ रंक राओ जाके एक समान, ईट हस्त सगल पुराण, बियो पूछ ना मसलत करे, जो किस करे सो आपे करे, जा का अंत ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप अकार आप निरंकार, कट कट कट सब कट आधार, नाम रंग पग पुपे लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए, गौंड महला पंजवा, जाके संग इहो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल बिखो है नास, जाके संग हृदय प्रदास, से संतन हर के मेरे नीत, केवल नाम गाये जाके नीत, रहाओ जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम पौनस है, जाके कीरत निर्मल सार, जाकी रेन बांछे संसार, कोट पतित जाके संग उदार, एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय ले तारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत तो परम पुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। पुले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया। जन्म मरण की ताप मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत वडाई। गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास। जिनकी आसो गुरु के जानिया, गुरु कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग। कहो नानक प्रभ है जनाई, जिन गुरु मुकत ना पाये पाई। गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा

पुरख भगवान गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे पव पार, गुर सेवा जमते छुटकार। अंधकार में गुर मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा। गुर पूरा पाये वड पागी, गुर की सेवा दुख न लागी। गुर का शब्द न मिलते कोई। गुरु नानक नानक हर सोए, गौन महला पंजवा। राम राम शंकर व्योहार, राम राम राम प्राण आधार। राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सब रहो समाए। संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम।

बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लीलाए, राम राम जप निर्मल भय, जन्म जन्म के किल बिछ गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम तै पार उतारे, सबते ऊच राम पर गास, निस्बासुर जप नानक दास, गौण महला पंजवा, उनको खसम कीनी था कहारे, दास संगते मार बिदारे, गोविंद भगत का महल न पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल सृष्टि के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, राव जगत पाते लेते दान, गोविंद भगत को करें सलाम, लूट ले सात पद कोवे, सात जना पद मल मल तोवे, पंच फूट जने इकमाए, उत्पुज खेल कर जगत वे आए, तीन गुना के संग रच रखे, इनको छोड़ ऊपर जन बसे, कर कृपा जन लिए चढ़ाए, जिसके से तिन रखे हटाए, कहो नानक भगत प्रभार, दिन पगती सब होए खुआर, गौण महला पंजवा, कल कलेश मिटे हर नाए, दुख बिन से सुख की नो ठाओ, जप जप अमृत नाम अघाए, संत प्रसाद सगल फल पाए, राम जपते जन पार परे, जन्म जन्म के पाप हरे, रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे, अग्न सागर के उतरे पारे, जन्म मरण सब मिटी उपाद, प्रभु क्यों लागी।

प्रगास भगत पाए हर कीर्तन करिए जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण महला पंजवा गुरु के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस संते मार होए रही है सगल की रीना कट कट रमैया सब में चीना इन विद रमो गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को यह सुहाओ पद अभिमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर सो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगे दर्जे पावे मान मंकन निर्मल।

सोहे दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम गौन महला पंजवा। सूप दीप सेवा गोपाल अनेक बार बंधन करतार। प्रभ की शरण गही सब त्याग गुर सो प्रसन्न पै वडपाग। आठ पहर गाये गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ हर गुण।

साध संग जपिए हर नाम, सागर पर बोहित प्रभ चरण, अंतर्जामी प्रभ कारण करण, राख लिए अपनी कृपा तार, पंचदूत पागे विकराल, जुए जन्म न कबहू हार, नानक का अंग किया करतार, गौण महला पंजवा, कर कृपा सुख आनंद करे, बालक राख लिए गुरुदेव, प्रभ कृपाल दयाल गोविंद, जी जन सगले बख्शिंद, तेरी शरण प्रभ जीन दयाल, पार ब्रह्म जप सदा निहाल, रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही, कट कट अंतर सर्व समाही, अपने दास का हल्क पलक तुम्हारे, पतित पावन प्रभ विरत तुम्हारे, औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिए भगवंत, रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांचित पूरन फल पाए, कर्म कारण समरथ दयार, सर्व निधान महा विचार, नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप, गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत, निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए, दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत करिए संसार, बड़पागी पाये पुरख अपार, रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल, किसको पोए ना सके जमकाल, जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खत्म पछान, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन

दारो संत का निंदक आकाश के तारो संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तत्क्षण ताल सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ ना।

बस अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही, गौण मैला पंजवा, जा को राखे राखन हार, तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है, काम क्रोध लोभ मोह न पो है, साध संग जपे निरंकार, निंदक के मुहि लागे चार। राम कवच दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको होत ना है, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए, जो जो शरण पै

भय भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन पाधार, गुण गोविंद रहो सच वापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गौंड अष्टपदियां मैला।

संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल खान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जाकी शरण, निंदक मार पाए सब तरण, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता के निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुरु बलिहारी, जा कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले कित सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन से बोले उपकारी, मूर्ख से बोले चखमारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कबहु न डोले, गौंड नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस काम

साफ का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागे। जम का दंड मूंड में लागे गौंड, आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिश गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, कट बिन से गगन न जाए ले। मोहि बैराग पायो एहो जियो, आए कहाँ गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहाँ ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्मे किन जियो दीन रे, हर में तन

कालो साट हत ना तोड़े तरे ध्यान वहां कह दे बटे भगवान क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर को दीना कुंचर पोत ले ले नमस्कार है बूझी नहीं काजी अंधियार है तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजमूना पतीना कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद गौंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे हो ना एहु जोगी ना अवधूता ना इस माए ना काहू पूता या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत ना को पाई रहाओ ना एहु गिरही ना उदासी ना एहु राज ना तीख मंगासी ना इस पिंड ना रक्तूराती ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती ना एहु तपा कहा वे शेख ना एहु जीव ना मरता देख इस मरते को जे कौ रोवे जो रोवे सोई पत सोवे गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया कहो कबीर हो राम की अंश जस कागद पर मिटे न मंस गौंड सूते तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सिर चढ़गो काल एहो मुंडिया सगलो दब खोई आवत जात नाक सर होई रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वहां का मन राता लड़की लड़कन खैबो ना है मुंडिया अंदिन ताते जाहे एक दो मंदर एक दो बाट हमको साथर उनको खाट मूड पलोस कमर बद पोची हमको चाबन उनको रोटी मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बूढ़क की टेक सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन पद शरण कबीर गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारे का होए विनाश।

हार शंख को बिख बिछे संसार कर सिंगार बह पखियारी संत की छिटकी फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे त्रकडायण हम तिसका बोझ

कह कबीर कह कर करना। गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना, गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस हट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, तन गुरुदेव अत रूप विचखन। गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी, आद पुरख ते होए अनाद, जपिए

जग में बक्ते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी, अन्य बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या, राग गौंड बाणी नाम देव जी की, कर पहला इको अंकार, सतगुर प्रसाद, असुमेध जगने तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने, तो न पुजे हर कीर्तनामा, अपने राम में पाजरे मन आलसिया रहाओ, गया पिंड परता बनारस अकबस्ता, मुख बेद चतुर परता सगल कर्म अच्छता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता, सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं, सिमर सिमर गोविंदं पजनामा तरस पर सिद्धं, गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए, प्राण तजे वहां को ध्यान न जाए, ऐसे रामा ऐसे हेरो, राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ, जो मीना हेरे पसुआरा, सोना गढ़ते हिरे सुनारा, जो बिखई हेरे

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरुमत राम नाम गहो मीता, तन में नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राण, जप मुकंद मस्तक।

कौ रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड। जे ओ अवसर तीरथ नावे, जे ओ द्वादश सिरा पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सर बेथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल फेत, अर्पे नार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजोनी हांडे। निंदा का करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सो दुसाध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। जोड़

न जाना तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कौन गते, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते, रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है, कबहू जाय प्याले, लोभी जियरा फिर ना रहत है, चारे कुंडा पाले, मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई, एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई, ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक जो तू देवे अंते होए सखाई। राम करी महला पहला, सर्व जोत तेरी पसर रही, जय जय देखा तह नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरो पार स्वामी, रहाओ जय पीतर कब पीतर बसिया, बार काहे नाही, तिनकी सार करे नित साहिब, सदा चिंत मन माही, आपे नेरे आपे दूर, आपे सर्व रहा पर पूरे, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जय देखा तेरिया समाए, अंतर सहसा बार माया, नैन लागस बाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पेंगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा पीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे, किन बिद सागर तरिये, जीवतियां नह मरिये, रहाओ दुख दरवाजा रो रखवाला।

आत करे, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले, इन विद सागर तरिये जीवतिया क्यों मरिये, रहाओ दूजा राम करी महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने, पचोली मंगल कहताई तीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली, करते बार न लागे रहाओ, पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे, सिद्ध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बह तेरे, जे तिन मिला ता तीरथ आखा तामन सेव करे, कागज लून रहे कृत संगे पानी कमल रहे, ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे, राम करी महला पहला। सुन माचिंद्रा नानक बोले, वसगत पंच करे नह डोले, ऐसी जुगत जोग को पाले, आप तरह सगले कुल पारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे, ऐनस सुन समाज समावे रहाओ, तिथिया पाए भगत पै चले, हो वैसो तृप्त संतोष अमूल्य।

पाए, तनवत नानक अगम सुनाए, गुर चेले की संग मिलाए। जीठा दारू भोजन खाए, छह दर्शन की सो जी पाए। राम कली मेला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप पड़ी है, पवन लगे मत जाई। सन्मुख सिद्ध पेटन को आए, नीचो देव दयाई। गुर पार पारण हारिया, दे भगत पूरन अविनाशी। हम कुछ को बलिहारिया रहाओ, सिद्ध साधक जोगी अर जंगम। एक सिद्ध जिन त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी। अखर जिन को आया, जप तप संयम कर्म न जाना। नाम जपी प्रभ तेरा, गुर परमेश्वर नानक पेत्यो। साचे शब्द निबेरा, राम कली मेला पहला। सुरती सुर कर लाये एक, तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाए तुसे तू रख, तेनस दीवा बला।

कौन बुझे विद जाने, खुद खुद चलत आप कर चीने, आपे तक पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तुस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ। दिन में रैन रैन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई। ताकि गत मित अवर न जाने, गुरबिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी। तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में ज्योत ज्योत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई। नानक तिन कै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला पहला, जहाँ हर प्रभु कृपा तारी। ताहो में विच्यो मारी, सो सेवक राम प्यारी। जो गुर शब्दी विचारी, सो हर जन हर प्रभु पावे। इस भगत करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावे। रहाओ तुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा। गुर पूरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया। सब नाग देद गुरबाणी, मन राता सारंग पानी। तें तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे। जह आप गया पौ पागा, गुर चरणी सेवक लागा। गुर सत गुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया। राम कली महला पहला, छादन पोजन मांगत पागे। खुदया दुष्ट जले दुख आगे। गुरमत नहीं लीनी गुरमत पत कोई, गुरमत परत पावे जन कोई। जोगी जुगत सहज कर वासे, एक दृष्ट एको कर देखिया। पीछिया पाए शब्द तृप्ता से, रहाओ पंच बैल गडिया देहतारी। राम कला निभ पत सारी, तार टूटी गाडो सिर पार। लकड़ी दिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार जोगी। दुख सुख सम करना सोग देओगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी। अस्थिर कंध जपे निरंकारी, सहज जगोता बंधन ते छूटा। काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन में मुंदरा हर गुर शरणा। नानक राम भगत जन करना।

गुरमुख नाम वखाणे कोई सब जुग में नाम उत्तम होई गुरमुख विरला बूझे कोई हर नाम किया है भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम।

जे वड पाग होवे वड पागी ता हर हर नाम ते आवे। नाम जपत नामे सुख पावे, हर नामे नाम समावे। गुरमुख पगत करो सब प्राणी, हृदय प्रगास होवे लिव लागे। गुरमुख हर हर नाम समाणी रहाओ। हीरा रतन जवे हर मानक, बहु सागर भरपूर किया। जिस वड पाग होवे वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवे हर लाल हर नामा, गुर कार तली दिखलाया। पागहीन मन मुख नहीं लिया, तिन ओले लाख छपाया। मस्तक पाग होवे तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल पया आनंदा। हरनी की कथा सुनाए, गुरमत मेल गई सब निकल। सत्संगत मिल बुद पाए, राम जन गुरमत राम बोलाए। जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाओ। जेवर पाग होवे मुख मस्तक, हर राम जना पेताए। दर्शन संत देहो कर कृपा, सब डाल दुख ले जाए। हर के लोग राम जननी के, पागहीन ना सुखाए। जो जो राम कहे जन ऊंचे, नर निंदक दंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए। हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले। जिन गुर की पैज न पाए, दया दया कर राखो हर जियो। हम दीन तेरी शरणाए, हम बारिक तुम पिता प्रभु मेरे। जन नानक बख्श मिलाए, राम करी महला चौथा। हर के सखा साध जननी के, तिन ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध सही प्रभु पाए, कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे। हमें

मेरे मन सतगुरु सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्याप कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई, मन तन साथ की।

ऐसी शोभ कमाओ आपस से ऊपर सब जानो तो दर्जे सुख पाओ संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ परपंच छोड़ सहज कर बैसो तूठा कहो न कोई सतगुरु मिलो नवे निड पावो इन विद तत्व बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजरे किसो करो बुराई सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता सहज मिले स्वामी तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पंजवा आवत हरख ना जावत दुखा न व्यापे मन रोगनी सदा आनंद गुरपूरा पाया तो उतरी सगल बेगनी ए विद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे ते हर हर हर रस पोगनी रहाओ सुर्ग पवित्रा

निवासा जय अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो त्यागनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी रामकली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचरज किस तैन न जाई बस अग

मेरा अंतराज भोग रस माणी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ चिंतना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा दे परवाओ रहत है स्वामी एक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई पूर्णा काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ना कतू जाता बरना साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसमा मारा।

हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माथे वजै र बाबा करनो मद बासुरी बाजे जेवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

कोई ओढ़ नील कोई सुपेद, कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू, कोई बांछे पुस्त कोई सुरजिंदू, कहो नानक जिन हो।

मनहार दे ऊट सुदाए परम मोह के बांधे बंद सुपन पया पखलाए अंद ते तो रचन रचिया करतार आवत जावत हु

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई, राव दूजा राम कली मेला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दीसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, और सोरे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले गीठा राव, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनद रूप प्रटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा। राम करी महला पंजवा।

आज हमारे पूरे सतगुरु बाजे अनहद तूरे सतगुरु रहाओ महिमा जा की जहर गंभीर होए निहाल दे जिस तीर जाके बंधन काटे राए सोनर बौर ना जोनी पाए जाके अंतर प्रगटो आप ताको ना ही दुख संताप लाल रतन किस पाले परया सगल कुटुंब ओ जन ले करया ना कुछ परम ना दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जत कत देखो आप दया।

जो कुछ करे सो मन मेरे मीठा ता उह अचरज नैनो डीठा अब मोह जानी रे मेरी दही बलाए बुझ गई तृष्ण निवारी ममता गुरपुर लियो समझाए रहाओ कर कृपा राखियो गुर सरना गुर पकराए हर

समेत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला पंजवा कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकी चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पल कर पार जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पवन दे अंक में माता की केसक वरण।

स्वामी संत जने परदास पया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन कलत मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालनहार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में

आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राख्या पर्दा संत प्रसाद मोहे कबू न करदा संते संग दिया कृपाल संत सहाय पै दयाल सुरत मत बुद्ध

तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना भुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछना कहे, रहाओ दिन हर सगल ने

कर कर थाके वडे वडेरे किन्हीं ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म अपार हर संत करे सोई परवान नान।

पंजवा कर संजोग बनाई काच तिस संग रहो या नाराच प्रत पारे नित सार समारे अंत की बार ऊठ सिधारे नाम बिना सब झूठ परानी गोविंद पदन बिन अवर संग राते ते सब माया मूठ

कर जामी। राम करी महला पंजवा, जो किछ करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते क्यों का ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, महापुरुष का

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रस गुरुमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुरपुरा पेटत उधार राव।

नानक का प्रभ आपे आप राम कली महला पंजवा किछु काज न कियो जान सुरत मत नाही किछ ज्ञान जाप ताप

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। राम कली महला पंजवा, मन माहि जाप भगवंत, गुरपुरै इहु दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास।

टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर के ते गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन। चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही त्याया अनंत।

दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय कर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस पेटक मिटे अभिमान।

साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे।

के बैसंतर पा गए, माटी को जल भेद त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, काट में सिंध कियो प्रगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख ना बिसरे।

एक त्याय साध कै संग पाप बिना से नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास कट कट रव रहा गुणतास दर्श दे तारो प्रभुवास नित नानक चित।

छिन छिन औद कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे रहाओ। तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे।

मैला। साहा गने न करें विचार, साहे ऊपर एक अंकार, जिस गुर मिले सोई विद जाने, गुरमत होए ता हुकम पछाने।

वर्त कपन कर मन नहीं पीजे। राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सुर मना हर जन संग कीजे। जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर का।

पहला अंतर उत्पुज अवर न कोई जो कही है सो प्रवते होई जुगे जुगंतर साहिब सतोई उत्पत पर लो अवर न कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर जिन जपिया तिन ही सुख पाया हर कै नाम न लगे जम तीर रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल।

तीरथ परम सुजाद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल।

जिन गुरु शब्द नहीं कर बार, नानक गुरुमुख तक विचार, राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावे बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पया, तन तन देखत गर्व गया।

हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुरु शब्द ना गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करें विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया। जिसका यो तन तन सो फिर लेवे, अंतर कैसा दुख पया। अंत काल किछ साथ न चाले, जो दिसे सब तिसे मया। आद पुरख अपरम परसो प्रभु, हर नाम हृदय ले पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा अगर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

जिन एहो चाख्या राम रसायन तिनकी संगत खोज पाया रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरमुख समकर जाना हरक सोग ते बिरकत भया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखनी मैला पैला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुर दयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पतीना राव रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका ये सतगुर देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक ते दीपक प्रगासिया त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

शोध करे पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा ते सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुण दाता हो मैं कृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मा

प्यार न लागे जोगी ना सच पल्ले पाए, इत सिंगरी शांत ना आवे जोगी अभिमान न विचों जाए। पाओ पाओ दोए पतलाए जोगी एहो शरीर कर डंडी, गुरमुख होवे ता तंती वाजे।

नाम नमन निद पाए, मनसा मार मन सह समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी, चित अदुष्ट लगाए।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाई आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्दी खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाणे संतो पूर करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछ

निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाए सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वस्या।

पातारी एक पेट करे सिरे अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक अंदिन पगत करे दिन राती राम नाम उर्धारी अंदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी सह दिन पगत न हुई कभी।

अकुट सच्चे पंडारी अपने भगतां नूं आपे तुठा अपनी कृपा कर कलतारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब कुछ है किसका आखन बिकम विचारी शब्द लगे से।

कृपा तुम्हारी, सतगुरु ना सेवे माया लागे, डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय, जय मिलिए राम मुरारी, अंगिन जागत रहे।

आई, इतना नाम आप बुलाए, इतना गुरमुख दे जाए, सदा सदा समाए हो संतो, जिस दी वड्डी वड्याई, किस दिन अवर न कोई राजा,

जिस हृदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा वाणी सब सुनाई नानक सुन वेख रहा विस्माद मेरा प्रभ रविया सर्व थाई।

किन्ही मून अवतूत सदाया, कोई कह तो अनन पगौती, मोहे दीन हर हर ओत लेके। किन्ही कया हो तीर्थवासी, कोई अन तज पया उदासी, किन्ही पवन सब करती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्ही कया मैं कुल्हे वड्या।

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहित सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी कृष्णा महा शीतलाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले जोरा करया, उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या, राखन हार समार

ठाकर को रख लियो चीता। जिन दिया तुझ पवन अमोला, जिन दिया तुझ नीर निर्मोला, जिन दिया तुझ पावक बलना, तिस ठाकर की रहो मन।

काहू बिहावे सेवा जरूरत, काहू बिहावे सोदत जीवत, संत बिहावे हर रस पीवत, जित को लाया तित ही लगाना, ना को मूड नहीं को स्याना, कर कृपा।

आए ऐसे राखन हार दयाल। जब तक देखो तुम प्रतपाल रहा हो जल पीवत ज्यों सुखा मितंत तन बिगसै गृह आवत संत लोभी का तन प्राण आधार क्यों हर जन हर हर नाम प्यार किसानी जो राखे रखवाला मात पिता दया जो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए क्यों हर जन राखे

संगीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश, जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चातक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारन हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम तै टूटे गुर प्रसाद, नानक तेखो सब समाद, राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब देखिए।

चरण कमल दृढ़ आए, एक शब्द लिवलाई अंधकूप दुखिया के का दियो, सात शब्द बन आई जन्म मरण का सहसा चूका, बहुर कतो न धाई नाम रसायन इहो मन राता, अमृत की तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया, नहीं चल वस्या जाई पूरे गुर पूरी मत दिनी हर बिन आ

कराई। पुत्र कलत्र मां बिख्या में गुरसाचे लाए कराई, अपने जी पे आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साथ कर्म का बेड़ा बांधिया पग जल पार पवाई, देश मार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दिपाई, अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अघाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल फल रहा।

आओ। खोजत खोजत लाल इक पाया, हर कीमत कह न जाए संतो, चरण कमल क्यों लागो त्याना, साचे दर्श समाई संतो, गुण गावत गावत पै निहाला, हर सिमरत तृप्त अघाई संतो, आत्म राम रविया सब अंतर, कट आवे कट जाई संतो, आप जुगादी है भी होसी, सब दुनिया का सुखदाई संतो, आप बेअंत अंत नहीं पाये, पूर रहा सब खाई संतो, मीत साजन माल जो बन सुत, हर नानक बाप मेरी माई संतो, राम कली मेला पंजवा, मन बच क्रम राम नाम चितारी, उमन केर महा अत बिखरी, गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ, अंतर सूखा बार सूखा, हर जप मलन पै जुतारी, जिस ते लागे तिन्हें निवारे, प्रभ जियो अपनी कृपा धारी, उधरे

करते प्रब अंत ना पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी। रामकली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सहज सोती मन वदियां वादाइयां राग रतन परवार परियां सबद गावणियां आईयां।

सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो सारे कहे नानक मन मेर सवारो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सुख साला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु वितो जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सब कर सवा गए शब्द वाजे कला दूत कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिन कहो से नाम हर कह लागे कह नानक तैसको हुआ तुद कर अनहद वाजे साची लिवे दिन देन मानी लिवे बाजो क्या करे विचारिया तुद बाज समर्थ कोई नाही कृपा कर बनवारिया एक नो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा सिलग कटे जान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सत्य सवारिया कह नानक यू आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनों होर क्या करे विचारिया एक परम पूले फिरें दे जिस इतना

तुम संयम रहे कर्म कमाए, सहसे जीव मलिन है तुम संयम तोता जाए, मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चित लाए, कह नानक दुर्प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए, जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले तुन्नी जन्म जुए हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया, कह नानक जिन सच कजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमाणी, जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले, जे को सिख गुरु सेव की सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले, गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले, आप छाड़े सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए, जो को गुर के बेमुख होवे।

वो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पानी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आस वखाणी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागे।

सब रतन है, हीरा जित गड़ाओ। सुर सकत आप उपाय कह, करता आपके हुक्म वर्ताए, हुक्म वर्ताए आप वेखे, गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक कस्यों लिवलाए। कहने नानक आप करता आपसे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तैसार न जानी, तत्तैसार न जानी, गुरु बाजो तत्तैसार न जानी। तेही गुणी संसार क्रम सुत्ता, सुक्या रहन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए, जिसनो अंगिन हर लिव लागे, जागत रहन विहानी। माता के उदय

हर मंगल गाँव सती गृह मंदिर बनया, हर गाँव मंगल नित सतिये शोक दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सपागे अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर सब ज्ञानी हर

जग में आए थे क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया। जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन नाम वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने आ लिया। यो विश्व संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुरु प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है हर दिन अवर न कोई, कह नानक नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनों।

0: गुर जाए हर प्रभु पास जियो।
1: सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुरु शब्द सच निशान जियो।

साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया

सुगड़ सुजाना सद परदाना अमृत हर का नामा चाख अगाने सारंग पाने जिनके पाग मथाना तिन ही पाया तिने तिराया सगल तिसे का मानो कौ नानक थिर तकत निवासी सच तिसे दी बाणो मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला सोए लड़ा प्रभ सोए लड़ा अनहद तुनिए सोए लड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभ त्याये सब किच पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूरन आसा गुरमुख मिल निर्गुनिए।

पुरधार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसै दुख पव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारिये। चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम।

आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जाने देख चलत दयाल सुन भगत वखाने जी जंत सब तुझ त्या में पुरख पत परमेसरा सर्व

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुरु पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उधारणो

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीश रे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते परगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत

बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सातुद पावसी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

सर्व ठाई, हर नाम नव निध गृह परे, सिमर स्वामी अंतर जामी, कुल समूहा सब तरे, त्रय रंग जागे, नै छिद्र लागे, कृपाल

बिन मिल बे शांत ना उपजे, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती दर्शन फिरत कब।

मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने चंत। हिम कर रुत मन पावती माग फगन गुणवंत जियो। सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रे आए हर कंत जियो। ग्रह लाल आए मन ति आए सेज सुंदर सोहिया। वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो। बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक

तिन बलिहारणे हर जप उतरे तीर छंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल न मनते बिसरे

लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त्र प्राप्त।

गर्ब गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करनी गुर विचार अगम अगोचर।

है सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई। जिनकी ती तिन कीमत पाई, और क्या कही है किछ कह न जाई। खोजत खोजत अमृत।

विलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख अंत

हर वर एक समाल, गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले, गुरमुख तोल तुलावे तोले, गुरमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छीजै देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड। तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना।

निर्मल नाम। जिन नाम दिया तिस सेवसा तिस बलिहारे जाओ, जो उसारे सोटा हसी तिस बिन अवर्णा को।

गुण जम पुर जाहे ना तिस एहो ना ओहो है अब गुण फिर पछता है ना तिस ज्ञान ना त्यान है ना तिस धर्म त्यान विणना में निरपो कहा क्या जाना अभिमान थाक रही किव अपना

तिन जाये, हर गुण गाए सदा रंग राते, बौड़ न पछो ताये, पब्बे पाले गुरमुख बूजे, ता निज करवासा पाये, पब्बे पौजल

क्यों गणी, खप खप मोए बिसंख, खसम पछाने आपना, फूले बंद न पाए, शब्द मैली खरा तू, किमा सच सुख पाए, खर्च खरा तन त्यान तू, आपे वसे शरीर, मन तन मुख जा

सरत्याये संपे पूर्व लिखे की पाये संपे कारण चातर चोर संपे साथ ना चाले होर बिन साचे नहीं दरगे मान हर रस पीवे छुटे निदान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान।

विद्या सोदय ततल है राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द नाची नहीं सूझ बूझ नहकाए पांडा गुरमुख आखी है।

सतगुरु प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिले सच पाये सहज पाए जस लेओ। क्या पवी है सच सूचा होए, साच सबद बिन मुकुत न कोए। रहाओ कवन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहूं अरदास हमारी, हूं संत जना बल जा।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाणे सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले।

सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते एहु मन लाया, मनसा आसा शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर।

पाए। आद को विस्माद विचार कथियले, सुन निरंतर वास लिया, अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले, कट कट साचा सर्व जिया, गुर बचनी अवगत समाये, तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी, सेवै सिख सो खोज लह, हुकम विस्माद हुकम पछाने, जी जुगत सत जाने सोई, आप मेट निरालम होवे, अंतर साच जोगी कही है सोई, अवगत तो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचे परम पद पाये, साचे शब्द समाये लिया, एक एको सच एका जाने, हो मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाने, अंतर कमल प्रगास थिया, जीवत मरे ता सब

पै, गुरमुख बाणी अगड़ कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साज समावे, गुरमुख परचय वेद विचारी, गुरमुख परचय तरिय तारी, गुरमुख परचय सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचय अंतर विद जानी, गुरमुख पाये अलख अपार, नानक गुरमुख मुकत द्वार, गुरमुख अकथ कथ विचार, गुरमुख निभ है सब

समाई गुरुमुख तरती साजै साजी तिसमें ओपत खपत सोबाजी गुरु के शब्द रपे रंग लाए साच रतो पत स्यो कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरुमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरुमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि गुरुमुख सर अपसर विद जाने गुरुमुख परवृत नरवृत पछाणे गुरुमुख तारे पार उतारे नानक गुरुमुख शब्द

जोग जुगत सच रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी

कट कट पेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसे मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगुण मेटे गुण निस्तार मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार तन हटड़ी एवं मन वन जारा नानक सहजे सचवा पारा गुरमुख बांध्यो सेत बिदाते लंका लूटी दैत संतापे रामचंद मार्यो एह रावण पेद बपीखण गुरमुख परचायण गुरमुख सायर पाहन तारे गुरमुख कोट तेती सुधारे गुरमुख चूके आवन जान गुरमुख दरगे पावे मान गुरमुख खोटे खरे पछाण गुरमुख लागे सहत्यान गुरमुख दरगे सिफत समाए नानक गुरमुख बंद ना पाए गुरमुख नाम निरंजन पाए गुरमुख हों में शब्द जलाए गुरमुख साचे के गुण गाए गुरमुख साचे रहे समाए गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला कवन कथा ले रहो निराले बोले नानक सुनो तुम बाले एक कथा का दे विचार पव जल शब्द लंगावन हार पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत तुन चेला अकथ कथा ले रहो निराला नानक जुग जुग गुरु गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हो मैं अग्न निवारी मैन के दंत क्यों खाये सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हिवै का कार मंदर अग्न पिराहन कवन गुफा जित रहे अवाहन इत उत किसको जान समावे कवन त्यान मन मन है समावे हौ हौ मैं विचों खोवे दूजा मेटे एको होवे जग करड़ा मन मुख गावार शब्द कमाये खाये सार अंतर बाहर एको जाने नानक अगन मरे सतगुर के पाने सच पैराता गर्भ निवार एको जाता शब्द विचार शब्द वसे सच अंतर हिया तन मन शीतल रंग रंगिया काम क्रोध बिख अगन निवारे नानक नदरी नदर प्यारे कवन मुख चंद हिवे कर छाया कवन मुख सूरज तपे तपाया कवन मुख काल जोहत नित रहे कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे कवन जोत जो काल सिंगार बोले बाणी नानक विचार शब्द पाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसे मिटे अंधिया।

ने दूजा जाए इकत कारिया ने बोले पवना गगन गरजे नानक ने चल मिलन सहजे अंतर सुनंग बाहर सुनंग त्रिभवन सुनंग म सुनंग चौथे सुनने जो नर जाने ताको पाप न पुनंग कट कट सुन का जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विदाता सुनो सुन कहे सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस

परै सच भाए सो शब्द का कहां वास कथि अले जित तरिय पव जल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कहिए तिस कहो कवन आधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरमुख शब्दे सच निव लागे कर नदरी मेल मिलाए आपे दाना आपे बीना पूरे पाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जय देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकल कला तर सोई नदर करे शब्द कट में वसे विच्चों परम गवाए तन मन निर्मल।

आया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगल वाई औदू सुन सच आहारो गुरमुख बोले सत बिरोले।

दौन गगन जब तबे ना हो तो त्रिभुवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण पेख अस्वरूप सो एको एको शब्द विडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित विद जग उपजय पुरखा कित कित दुख बिन सुजाई हो मैं विच जग उपजय पुरखा नाम विसरय दुख पाई गुरमुख हो वै सो ज्ञान तत विचार हो मैं शब्द जलाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रह समाए नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उधारे नानक बिन नामे जोग कदे न होवे देखो हृदय बिचारे गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पीजे विरला बूजे कोए गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई।

गुरमुआ जनमहार, गुरमुख मन जीता हूँ मैं मार, गुरमुख साच रखिया उधार, गुरमुख जग जीता जमकाल मार बिदार, गुरमुख दरगह ना आवे हार, गुरमुख मेल

जिसनो लाए पाओ, नाउ बीजे नाउ उगवे ना मेरे समाए, हो मैं एहो बीज है सैसा गया विलाए, ना किच बीजे ना उगवे जो बक्से सो खाए, अम्बे से ती अम्ब रलिया बहुड़ ना निकस्या जाए, नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए, लोक के वेख है बपुड़ा जिसनो सो जी ना है, जिस वे खाले सो वेख है जिस वस्या मन माहे, महला तीजा मनमुख दुख का खेत है दुख बीजे दुख पाए, दुख विच जमे दुख मरे हो मैं करत विहाए, आवन जान ना सुजई अंधा अंध कमाए, जो देवे तिसे ना जानई दिते को लपटाए, नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए, महला तीजा सतगुरु मिले सदा सुख जिसनो आपे मिले सोए, सुख है एहो विवेक है अंतर निर्मल होए, अज्ञान का प्रम कटिए ज्ञान प्राप्त होए, नानक एको नदरी आया जह देखा तै सोए, पौड़ी सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई, सब किछ आपे आप है गुर शब्द सुनाई, आपे कुदरत साजियन कर महल सराई, चंद सूरज दोए चानने पूरी बनत बनाई, आपे वेखे सुने आप गुर शब्द त्याई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, रहा उस श्लोक कबीर मेहंदी करके कालिया आप पिसाए पिसाए कैसे बा

परम पुलाई सब जग फिरी, फावी होई पाल सो सब सांत ना दे रही, क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी।

को सच कमावे नानक सो तपा मोख अंतर पावे महला तीजा सो तपा जे ओ तप काले सतगुरु नो मिले शब्द समाले सतगुरु की सेवा ओ तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिन उप

सब साजियन रविया सब वन त्रिण सब किस आपे आप है गुरमुख सदा हर पण सब देही तो जी पई सच्चे आप बुझाई श्लोक महला तीजा।

होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत ए नाखियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेश करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तखत सच्चा।

सच्चाई सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरमुख सुख पावे, निज करवासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द।

मिले वडाई, जिस कट पीतर सब द्रवे, सब कट मेरे हो सब ना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन, जिसे फुलाई पंग सिर।

कबीर बोले ईश्वर सत स्वरूप परम संत मैं रेख न रूप मैला पहला सो अवधूती जो तू कह आप पिख्या भोजन करे संताप औ हठ पट्टन में पीख्या करे सो अवधूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख।

पाया सब आत्मराम सचाता, बाहर मूल न खोजी है कर्माए विदाता, मन मुखार मंदर की सार न जानने, तिन्नी जन्म गवाता, सब में एक वरदा।

0: वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल से रस्ता होशी आए तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नान का ओढ़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे किस कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पगति रापे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवापे सब किच हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला। सहन सरदान दे इंद्र रोआया परशुराम रोवे कर आया अजय सो रोवे पीछिया खाए ऐसी दरगह मिले सजाए।

पूजा जप तप सब किछ मन्ने अवर कारा सब बाद नानक मन्या मन्निए बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किछ आपे आप है।

जय अनहद बाजे तुन बज दे गुरु शब्द सुनी जय चित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई श्लोक महला दूजा अंधे के राह दसे अंधा होए सुजाए होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए अंधे एना आखियन

कोई जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखी है जे हुक्मो अंधा होए नानक हुक्म ना बुझे अंधा कही है सोए पौड़ी काया अंदर गर कोट है सब दिसंतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे।

सब किछ कर ही माए है बड भागी लीता, अंदर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता, आपके मेल मिलायन आपे दे बुझाई। श्लोक मैला पहला, वेल पिंगाया कत गुणाया, कट कुट कर खुम्ब चढ़ाया।

जो गुरमुख चले सच त्यायन से सचे जिन हर खर्च तन पले भगत सोन गुण गावंदे गुरमत अचले रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पले आपे मेल मिले।

प्रसाद जन नानक हर प्रभु बुझिया गुर सत गुर कै प्रसाद पौड़ी खटन हारे खाट आपे ही खटिया आपे पूरा साओ आपे ही खटिया आपे कृपा सा।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

पावे, अंदर मैल न उतरे हो मैं, फिर फिर आवे जावे, नींद व्याप्या काम संतापया, मुखो हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता।

आप तरे आप तंग सब तारे सबा सृष्ट छुड़ावे मैला पंजवा पंडित अखाए बहुती राही कोरड़ मोठ जिनेहा अंदर मोह

उतारोहा व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूड़ा मन लागा तुस्मोहा ठग ऐसे ठग रल आया साथ दे इको जेहा सतगुर सराफ।

सा पौड़ी, जिस तय मस्त कर्म हुए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गास्या सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद,

तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता श्लोक महला पंजवा छकड़े बाजार सोहन विच व्यापारिये वखर हिक अपार।

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझे, बिन दागे पग जाई, साधु हुए सो भगत पछाने।

आगे जी मुख भेद गायत्री निपसैसो क्यों ब्राह्मण बिसर करे जहाँ कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हथ कर्म कर उदर परे चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे तू ब्राह्मण मैं काशिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने हमरे राम नाम कह उबरे

बारे ले उर धरिया सोरे मजे पवन चकोरिया आकाशे फर फरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया करती जलहर सोखिया

रहे निरालम तारी। कहत कबीर सुनो रे संतो, कर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सीजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। पवन इद तरन तारन, चिंता मन एक निमक ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी।

आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे जिह कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मोह माई।

जिहे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे।

रूपक अमरक संसार, काम क्रोध दुख का डीले मार, जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रत्तन

मंदर सोवे पटंबर तान, सेज सुखाली बिगसै जियो, सो सिमरन तू अंगन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझको है नमाए। सिमर सिमर हर हर मन गाये, एहो सिमरन सतगुर ते पाये। सदा सदा सिमर दिन रात,

बंदच बंधन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया। जब नप सिख यो मन कीना तब अंतर मज्जन कीना। पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ।

आकाश मदे परमियले पंच जना से बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले राव आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुमार पुरंदरिये

वेद पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजाओगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जंत ना सतावोगो।

तत है। सतगुरु हुए लखाया राम कली कर दूजा, बनारसी तप करे उल्ट तीरथ मरे, अगन दह काया कल्प की जय, अश्वमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय, राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजय। असदान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सर तौ न पूजय। मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष। निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा तत रस अमृत पी।

ओंकार सतगुरु प्रसाद। इड़ा पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तिथाई। संतो

तहे बाजे शब्द अनाहद बाणी तहे चंद ना सूरज पौन ना पानी साची जागी गुरमुख जानी उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे अमृत रस गगनंतर बीजे एस कला जो जाने पेओ एते पास परम गुरुदेओ दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाथ हाथ पर आला आले पीतल थाती।

कोट कोट दोख बहुकी ने सब पर हर पास खरे राव हर हर नाम जपें आराधें सेवक पाल।

मुख बोले नर नर हरे पंच दोख असाध नगर में एक सिम पल दूर करे वडपागी हर नाम त्यावे हर के भगत हरे तिनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड मुगद निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो सर्ण परे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वड गे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम कैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने

पावै। जन नानक के प्रभु वद में नट महला चौथा, मेरे मन कल कीरत हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रभधारी, लग सतगुर हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर रुणे।

नट महला चौथा। मन मिल संत संगत शुभवंती, सुन अकथ कथा सुखवंती, सब किलबिख पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती रहाओ, हर कीरत कल युग विच उत्तम मत।

हर अकथ कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल।

काल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर पग पाए जिना हर प्रब जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रब दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भावे मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहा तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बार खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधार्यो हाथ पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसार्यो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेख्यो दास का कुल ना विचार्यो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवार्यो महा बिखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतार्यो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहार्यो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर्व है कृपा निध कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

हरे राव हर हर हर हर हर मन प्यावो मैं हर हर नाम प्यारे दीन दयाल पय प्रभु ठाकुर गुर के शब्द सवारे मधुसूदन जग जीवन माधो मेरे ठाकुर अग

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अति मीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे हथ पी के लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध दिसारे गुरमत राम नाम।

बलिहारे पखंड पखंड कर कर तरमे लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्थारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लै कू

किए कर सेवक पग लगवारे जगन्नाथ सब जंत्र उपाए नक्खीनी सब नथहारे नानक प्रभ खिंचे तिग चलिए जो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नवारे सतगुरु ज्ञान मजन है नीको कीनू मिल कलमल पाप उतारे रहाओ। संगत का गुण बहुत अधिकाई परसुआ गणक उदारे परस न परस पै कुब जाको ले बैकुंठ सिधारे अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बुलारे मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी जम कंकर मार बिदारे।

किछ ना समारे। जब कर मंदर आग लगानी तब कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे। जो कुंचर कदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कर निस्तारे रहाओ। प्रभु के सेवक बहुत अपनी के मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभु सरदा भगत मन पावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे। हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवे बिच पाथर कीरे कारे। अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मृग सिंहारे। बन बन टूट

श्रेष्ठ बुद्धि अपना कर लूकी जा रे। प्रभ को जन अंतर हृद लोच है, प्रभ जन के सांस निहारे। कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे। आपन आप आप प्रभ ठाकुर, प्रभ आपे शिष्ट सवारे। जन नानक आपे आप सब वर्त है, कर कृपा आप निस्तारे। नट महला चौथा, राम कर कृपा लेहु उबारे।

मिल सत्संगत परम पद पाया कद माखुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब फोकट चार सिवारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख लखारे।

रिद अंकर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुरु गुर निस्नारे पवन सूत सब नीका करया सतगुरु शब्द विचारे निज पल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंदर हम निकीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगमा।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाद बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचनाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़या हर राख लियो तराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन्म मरण निवार ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया। हर पतित पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उधार्यो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम सुखदाता, सत्संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पचाता। रहाओ वड पागी गुरु दर्शन पाया, गुरु मिले हर प्रभ जाता। दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर शरणाता। तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बाता।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब के निमित पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्तके तुरली किया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगह बाजया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो ते गर्भ जोनी गालिया, जो लोन जलाया गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौरा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुरु पाया, हर जप्यो क्रम तो पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांत आई, हर उर्धार्यो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिरस जाए पर पापे, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूड़ी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम है, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम से आई है हर हर, मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्व जंजाला, तिन जम नेड़ न आवई गुरु राखे हर रखवाला। हम बार किछु न जानहू हर मात पिता प्रताला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला, मन अनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल बिख काट, हर हर उतारे हो गुरपुर है मेरा शीश की जय गुरवाट। रहाओ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट। हर साजन मेलियो गुरपुरे, गुर बचन बिकानो हट हाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे बहु कंचन दी जय कटकाट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पव पागा लज पानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी पूख।

अवर टहला चूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को न मिटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरे, जा कै सिमरन अपदा टरे, जा कै सिमरन मुच्चत पाप, जा कै सिमरन नहीं

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

आए बिलास। जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंचो मूचो बहु अपार, सिमरत नानक।

नैन दर्श पेखो निस्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिगसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जां कै कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे प्रतपाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा कर्म जां कै दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ता को जाप। साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाए, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड लेहो पौजल बिखमते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांधव भगत वछल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नानक, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा।

तेरो बाप मादो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारियले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारियले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारियले ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत।

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कटकट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आशा रे। प्रणवे नामा पैने कामा को ठाकुर को दासा रे। राग मारू मैला पहला कर पहला चौप दे।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरप चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यो रे। पंडित संग वसें जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पंत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो सनेही। मारू मैला पहला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना कर।

कमाए। हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण काए। तो दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आपको हवर पला संसार। मारू महला पहला इहो तन सर्व रहा भरपूर, मन मुख फिर ऐसे जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारे, जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ। ना इहो तन जले ना तस्कर ले जाए, ना इहो तन डूबे।

तिन कहो किने परमगत पाए, पणत नानक अकथ की कथा सुनाए। सतगुर मिले ता इहो तन पाए, मारू मैला पैला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मूड़े काए चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्रात तज छोड़ तो अप्यो पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। पणत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत बोहित जल सिर तर टिके। साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी, सच ना लागे कत राजा तख्त टिके। गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख, सर्व ज्योत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्णु लिखी मुनि, शंकर इंद तपे पेखारी। माने हुक्म सो है दर साचे, आकी मरे अफारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरुपूरे विचारी। बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी। नितनिया तन निगुरिया, गुर निमानिया तू मान। अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझिए, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटिए मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला जोगी जुगत नाम निर्माइल, ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती।

ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती, शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी।

जियो जिसनु साचा शक्ति लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ पेशेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे।

जात नानक लेखा मांगे कवना, जाचू का मन अभिमाना, तास तास धर्म राय जप्त है, तय सच्चे की सरना, मारू मैला तीजा, आवन जाना नाथी है, निज करवासा होए, सच खजाना बख्शिया, आपे जाने सोए, ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार, गुर के शब्द ते आए तू सच लगी प्यार, रहाओ एथे नावो पुल्या फिर हथ किताऊ न पाए, जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए, वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए, आंदिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए, आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे, नानक नाम वड्याईया जय पावे तें दे, मारू मैला तीजा, पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए, हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए, मेरे मन गुरमुख नाम हर त्या

शब्द पेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए इहो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर्व आपिया जमपुर चोटा खाए नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्शियों गुरमुखा सुख होए मारू मैला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ एक सच्चा सब सेम दी तुर पाग मिलावा होए गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए एक पगती सार न जाननी मनमुख परम पुलाए ओना विच आप वर्तदा करना किछु न जाए जिस नाल जोर न चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए सो साचा साला ही है तिस जेवर अवर न कोए मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर कै बचन अराध तू।

सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे, दालद पंच सुदा में मिलियो भगति पाए तरे, भगत वचल हर नाम कीर्तारत गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदे तू प्रहलाद बिदर दासी सुत, गुरमुख नाम तरे रहाओ कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे, गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे, बेसुआ रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नरहरे। नाम जपत उग्र सैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे, जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे, जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिव लाई, साधक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया, मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया। मेरे मन नाम जप करया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा, गुरमुख पार पया रहाओ सुर नर गंगंदर बे जप्यो, रिख बपुरे हर गाया शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो। मुख हर हर नाम जप्या हर हर नाम जिना मन पीना, ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस्त्यायो, हर जपत्या अंत न पाया वेद पुराण सिमरत हर जप्या। मुख पंडत हर गाया नाम रसाल जिना मन वस्या, ते गुरमुख पार पया अनत तरंगी नाम जिन जपया। मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए, जो हर प्रभ मन पाया गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो। जन नानक नाम लया

मन पाणी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाओ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाई है अकथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार।

हम जाचक दीन प्रभ तेरिया मुख दीजै अमृत बाणी सतगुर मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख बिन नामे त्रिग जीव दे विच बिस्ता मन

हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवे अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदियां नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठेह मारो, हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हाँ अंदिन नाम लई करता रे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा, सिर ऊपर अमर करारा। पौन पानी बैसंतर डर पे इंद्र विचारा। एका निरपो बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहे।

देह तार अर देवा डर पै सिद साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपुरी ए कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहे दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखे बिदारे विदर दासी सुत पयो पुनीता सगले कुल उजारे कवन पराद बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजै पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्त न वित्त प्रम्यो बहु पांते अनेक जतन करता।

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए। त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो मुखते सुन कर।

हूँ कौ दौरे हो आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घरक नहीं जाने हो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले माने हो पयो किरपाल ठाकुर सेवक का सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू महला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाय श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन।

सद हजूर हाजर है नाजर कतै न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खिन पीतर महिमा कथन न जाई निरपो पए सगल पै खोए गोविंद चरण ओटाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

कहां दुला रहे हो। हस्त पाव चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रहे हो। मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो।

तारियो प्रभ बिसरत महा दुख पायो। एहो नानक पत विचारियो मारू मैला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप।

था। अनुपव अचरज रूप प्रभ देखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तै अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक।

ताओ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट न कबू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ न कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए। मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने।

रूप रंग खुशियां मन भोगण चेते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूढ़े रंग राते जिन गुर मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्यारा।

किया दिनस सब राति वन त्रिन त्रिभुवन पानी चार वेद चारे खानी खंड दीप सब लोआ एक कवावै ते सब होआ करने हारा बूजो रे सतगुरु मिले ता सूजे रे रहाओ त्रै गुण किया पसारा नरक सुरग अवतारा हो मैं आवे जाई मन टिकन न पावे राई।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल और अंतर तारो, दिखिया बनते जियो।

नानक ताके बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्तु सत्य पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता। कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना जाए।

मन तन बासना बहुत विस्तारा, अहमेव मूठो बेचारा, अनेक दोख और बहुत सजाई, ताकि कीमत कह न जाए, प्रभु विसरत नरक में पाया, तह मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिसको होत कृपाल स्वामी, सोजन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रभु

प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना पन तारिया, महा अगन ते आप उबारिया, जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही, नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा, मारू महला पंजवा, कत कौ डह कावो।

आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इस नाम से आई नानक दीन नाम मांगे दुखिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अकप

निकला गो सेवा मारू महला पंजवा पतत उदाहरण तारण बल बल बले बल जाय है। ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय है। मोको कोई न जानत कैयत दास तुम्हारा यह ओट आधारा।

भूमंडल खंडल प्रभु तुम ही आछे, अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मैला पंजवा त्रिपत अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए, जा को नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तीर्थत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका।

गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे नानक कबू नहार मारू मैला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो तिसें प्राप्त नाम।

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

हुआ पंथ ताक कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे परहारे उरद मुख महा गुबारे सास सास समाले सोई उठे खत्म छड़ाए लया विचों गर्भ निकल आया खत्म विसार दुनी चितलाया आवे जाए पवाये जोनी रहन न कितनी थाए बया मेरवा रख लेन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया।

मरो प्रदान है कट कटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाता थाने आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण

काल फांस जब गर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई मारू मैला नावा माई में मन को मान न त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहाँ होत अब कह पछताए छूटत नाहिं भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो मारू अक्षदियां मैला पहला कर पहला ओंकार सतगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका हर सच्ची रख बहु कणा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ हर पढ़ी है हर बुझी है गुरमती नाम उधारा गुरपूर है पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलो है जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमती जद मत्थी है अमृत पाई है नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना हौ मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कह सब दे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसै।

जै पाए कार कमावनी लिख तोता से सारा साची संगत थान साचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ साचे सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा मानस दात न हो वही तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुरु सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साके वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल बाबा जग फाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए आवा गौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सह रूप जय सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाए किसनो दी जय दोष गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख मागर मच पाए कुंडी जाल बताए गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए जमन मरण न सुजई कीर्तना में क्या जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोय ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तावत जग बांदिया ना बूझे विचार जमन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तै जाओ जिस तै डर तै पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक तू बीजो नाही खाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे सुख नहीं गाडे लादे चार

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोचिए तू दीपक तू धूप, गीत साध चा

हर नाओ तू बख्शे ता मेल ले नानक बल जाओ मारू मेला पहला लाले गर्व छोड़िया गुर के पैसे तुभाई लाले खसम पछाणिया वड्डी वड्याई खसम मिले सुख पाया कीमत कह न जाए लाला गोला खसम का खसम वड्याई गुर प्रसादी उबरे हर की शरणाई रहा लाले नो सिरकार है उर खत्म फुरमाई लाले हुकम पछाणिया सदा रह रजाई आपे मीरा बसले वड्डी वड्याई आप सच्चा सब सच है गुर शब्द बुझाई तेरी सेवा सो करे जिसनो लह तू लाई बिन सेवा किने न पाया दूजे परम खुआई सो क्यों मनो विसारी है नित देवे चले सलाया जियो पिंड सब तिसदा साओ तिने विक पाया जा कृपा करे ता सेवी है सेव सच समाया लाला सो जीवत मरे मर विच्चों आत गवाए।

गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए। सोइना रूपा सब तात है माटी रल जाई, बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई। नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई। मारू मैला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर है। तेहो मन अवगुण बांधया सहो देह शरीर है। पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है। क्यों रही है उठ चलना बुद्ध शब्द बिचारा। जिस तू मेले सो मिले तुर हुक्मा पारा रहा। जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ। जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ। मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया मेले मन चाओ। कीता चासा लाई है कर देखे सोई। जिनकी आसो मन वसे मैं अवर न कोई। सो साचा सालाई है साची पत होई। पंडित पढ़ न पहुंचई बहु आल जंजाला। पाप पुन दे संग में खुदिया जम

पहला मात पिता संयोग उपाए रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे। संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले सफर यो पार अपार करे रहाओ। ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास संवार करे। चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे। करन पलाव करे नहीं पावे किस उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूड़ कुटुंब क्यों प्रीत करे। खावे पोगे सुन तो देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर सब दिन आप पचाने बिन हर नाम ना काल करे। जे कामो हो मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे। बिरद पया जोबन तन चुकिया कफ कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे। सुरत गई काली हूँ तौले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लागे जम मार समारे नरक खरे। पूरब जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे कां को दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर सब दे जन्म जरे। खुशी खुआर पै रस पोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो फिर कर्म राय का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावे जां को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे। हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुरु प्रदान द्वारे नानक तिन जन की।

मैं गल अवगुण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ तेयड़े फिर समला सौरड़े करवास सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुणतास लेख निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए फिर मुत्ती डोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

सो सौ रंग रवंत सबे रुति चंगिया जित सच्चे सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुती निसदे हो पत्तन पूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो।

एहो शब्द सार जिसनो लाए, गुरमुख तृष्णा भुख गवाए, आपन लिया किछु ना पाए, कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया, कर कृपा अपने कर आया, अंजन माहे निरंजन जाता, जिनको नजर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए, अपना आप विचों गवाए, सतगुर बाजो सब तंग कमावे, देखो मन विचारी जियो। एक परम पूले फिरे अंकारी, एक ना गुरमुख हो मैं मारी, सच्चे शब्द रते बैरागी, और परम पुले गावारी जियो। गुरमुख जिन्नी नाम न पाया, मनमुख बिरसा जन

कार्तिजा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। लख चौरासी परमते परमते दुर्लभ जन्म अब पायो, रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो, अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो रहाओ। रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो, जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो। अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो, जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो, जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो। जो पयो कृपाल ता साध संग पाया, जन नानक ब्रह्म ते आयो। मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग, हर नाम रस रस

अंतर दा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिनसै जिस बसै मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहै ताहे रिद्ध सिद्ध नव निध जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास मारू मेला पंजवा।

देव कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर नह व्यापै खिने उतरयो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत। कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो विखाद। शीत मंद सुगंध चल्यो सर्व थान समान, जहां सा किछ तहां लागयो तिल ना शंका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुवाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांद।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुर चरणी मन लागना, ए विद तिसे प्राप्ते जा के मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभु की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन पेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद्ध सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई हवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्त जीवना, पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं जीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना,

खानी मन हर पगति संग सीवना मात्या हर रस में राते तिस बहुड़ न कबहू औखीवना मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना मारू महला पंजवा कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुर प्रसाद जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता दोहु व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सुहेला पालिये ग्रह राज में नरक उदास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही में जो रह अलिप्ता तिस जन की पूरन कालिये जागत सूता परम विगूता बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहालिए कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा मोह मगन मन व्याप्या चिंदा गुरु प्रसाद सुख दुख समझाने कट कट राम हियालिए संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिए छोड़ बहे तो छूटे नाही जो संचे तो पौ मन माही इस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चोर टालिए जो सूरा तिस ही होई मरना जो पागे तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना नानक के पूरन सुख दाते तू देता नाम समालिए मारू महला पंजवा बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दो जग पाए सिरजन हारे लेखा मंगे बाणिया संग न कोई पया बेबा माल जोबन तन चोड वजे सा करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कानिया खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे

साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यों पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाए पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान ध्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके, साचे स्यों लिवलाए।

अगर सरवर आपे मच खच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी आप पति जय गुर की बैनी आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही कस बख्शे आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना आपे सुगड़ स्वरूप से आना कहता बकता सुनता सोई आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता उदर संजोगी धरती माता रैन दिनस दोयदाई दाया जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला सर्व जिया जग जोत तुम्हारी जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम।

शब्द सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख है, कोई न मेटे साचे लेख है, आपे करे कराए आपे, आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने स्यों लूजे, जो तुझ सेवे से तुझ ही जे है, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना तिस मात पिता सुत प्राता, सगले सैल उपाय समाए, अलखना लखना जाई है। कर कर साकी मीत कनेरे, कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सबना सिर, पाए मिले पहु जाई है। पूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दीसे, नामो गत मित पाई है। गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है। जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना तमाई, परपुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगम अपार है, साचे सृजनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है, होर के ती दर्दी से बिललांदी, मैं गणत ना वै काई है। साची कीरत साची बाणी, होर नदी से वेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं तर होर न काई है। जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कहे बेनंती, दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला, दूजी दुर्मत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने छोहर, बिन फिर नींद न पाई है। अंतर अगन जले पड़कारे, मन मुख तक के कुंडाचारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये, साचे हाथ बढ़ाई है। काम क्रोध अंकार निवारे, सत्सर पंच शब्द संगारे, ज्ञान खड़ग ले मन स्यो लूजे, मन सामने समाई है। माँ की रकत पिता बिंद तारा, मूरत सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देखे, दुख दर्द शरीरों जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई।

करम तरम कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द है मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब तीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाह सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अविनाशी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कहे प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभवन ज्योत तरी परमेश्वर, अवर न दूजा पाई है। जिसके चाकर तिसकी सेवा, शब्द पति जय अल

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यो बणत बनाई है, सब की गत मित कोय न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे, साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हे उपाई है, वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है, एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे, भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है, एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए, गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई है, एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे, राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है, गुरमत छोड़े उजड़ जाई।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, त्यों पाव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे सब रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लह अंतर्गत जाने, सतसंगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिस का लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, ताड़ी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यों तिस पाना तिवे चलाए, तिसे सरीक ना दीसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग तत्वारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूजे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, पौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवासा

काली हुफुन तौले आए, विणनावे गत गया गवाए, दुर्मत अंगला बिनस बिनासे, मूठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न फूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिर्द पया तन छीजे देही, राम न जपे अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वास न पाए, पेयड़े सिर मारा है, खाजे पैजे रली करीजे।

पछाने गुर के संग शब्द कर जाने किसी मंदा आंख न चले सच खरा सच आरा है साच बिना दर्श जय न कोई हाथ शब्द कह जय पत होई आपे बख्श ले तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की विद जाने नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाध निराला हर अंत न पाये गुर गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किनेही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगे मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुर दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे।

श्रेष्ठ उपाय रहे प्रभ छाजे, पौन पानी बैसंतर गाजे, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाहे, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त पराए।

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखी है मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुर पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआ।

दुख कनेरे नरक पते अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी ली जय दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कल

जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत विचार आहे। कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही। अमृत नाम गुरु वडदाना नाम जपो सुख सारा है। सत गुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखन हारा है। खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर सैल न पीजे। करण पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवतार।

फूकर कहिए कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है, सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है, राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा है, मारू मेला पहला, कर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है, जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखां फुन आगे, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है, हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, ऐनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है, राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है, सच तीरथ नावो हर गुण गावो, सत विचारो हर लिवलावो, अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है, सतगुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है, पंच तत् मिल काया कीनी, किसमें राम रतन ले चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है, सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुरु शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुरु संगत के हो निस्तारा है, साकत पूर कपट में टेका, हैनत निंदा करे अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है, साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मूके, बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार असारा है, बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परिया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है, गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है, गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूर अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है, हो मैं ममता करदा आया, आसा मनसा बंद चलाया, मेरी मेरी करत चाले चाले, बिखला दे चार बिकारा है, हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई, उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है, हर गुर पूरे की ओट पराती, गुरमुख हर लिव गुरमुख जा

तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करें प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे लेवे आपे देवे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल रचाया, पवने पानी अग्नि जियो पाया, देही नगरी नौ दरवाजे, सो दसवां गुप्त रहाता है, चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझे सबद निराला, साकत दुर्मत डूबे दाजे, गुर राखे हर लिवराता है, अब तेज वाये पृथ्वी आकाशा, तिन में पंच तत् करवासा, सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया हो मैं प्राता है, इव मन पी जय शब्द पति जय, बिन नावे क्या टेक सिकी जय, अंतर चोर मुहे कर मंदर, इन साकत दूत ना जाता है, दुंदर दूत पूत पी हाले, किंचो तान करें बेताले,

चारे जम कंकर काल पर आता है जम दर बांधे मिले सजाई तिस अपराधी गत नहीं काई करण पलाव करे बिल लावे ज्यों कुंडी मीन पर आता है साकत फांसी पड़े अकेला जम वस्किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त न सूजे आज काल पच जाता है सतगुरु बाजना बेली कोई एथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देवे कर कृपा क्यों सलले सलल मिलाता है फूले सिख गुरु समझाए उजड़ जांदे मार्ग पाए जिस गुरु सेव सदा दिन राती दुख पंजन संग सखाता है गुर की भगत करे क्या प्राणी ब्रह्म इंद्र महेश ना जाने सतगुर अलख कहो क्यों लखिए जिस बख्शे तिसे पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन एनत निर्मल ज्योत सबाई काट दीपक गुरमुख जाता है।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पहचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दीजे, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सृजन हारे, जिन कर चक्र तरे विचारे, आपे करता कर

पूरे तत न पाए सच सूचे सच रहा है सब काला है सुन सुन आखे आपे दाना सच पराख है जिनको नदर करे प्रभ अपनी गुरमुख सब चलाहा है सुन सुन आखे कीर्ती बाणी सुन कहिए को अंत न जाने जा को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुधता है जन्मे को वाजे वादाए सोह लड़े अज्ञानी गाए जो जन्मे ते सर पर मरना तीर्थ पया सिर सहा है संजोग विजोग मेरे प्रभ किए सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए दुख

वखर जिस तन पल्ले शब्द पचै ओ माहा है। काची सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभु पावे। पूंजी साबत रात सलामत।

डाल छोड़ तत्मूल पराता मनसाचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है, और न कथने सिफ सजाई।

नानक साथ मिले पत राखो तू सिर साहा पातशाह है। मारू मैला पहला दखनी काया नगर नगर गर अंदर साचा वासा पुर गगन अंदर। अस्थिर थान सदा निर्माइल आपे आप उपाएंदा अंदर कोट छजे हट नाले आपे ले वे वस समाले। बजर कपाट जड़े जल जाने गुर सब्दी खोलाएंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौ कर सापे हुक्म रजाई। दसने पुरख अलेख अपारी आपे अलख लखाएंदा पौन पानी अग्नि इक वासा आपे की तो खेल तमाशा। बल्दी जल निवरे कृपा ते आपे जल निद पाएंदा तर्क उपाय तरी धर्मशाला। उत्पत पर लो आप निराला पौने खेल किया सब थाई कला खिंच टहाएंदा। तार अठारे मालन तेरी चौर तुले पवने ले फेरी चंद सूरज दो दीप कराखे सत कर सूर समाएंदा। पंखी पंच उडर नहीं तावे सफल्यो बिरख अमृत फल पावे। गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुगाएंदा। तिल मिल चिल के चंद न तारा सूरज किरण न बिजल गैनारा। अकथी कथो चेन नहीं कोई पूर रहा मन पाएंदा। पसरी किरण जोत उजियाला कर कर देख है आप दयाला। अनहद ऋण चुनकार सदा सुन निरपो कह करवाएदा। अनहद वाजे परम पौ पाजे सगल व्याप रहा प्रभ छाजे। सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएदा। आप निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई। एक अंकार वसे मन पावे।

का कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे रे प्रवाह अखुट पंडारे तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएगा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उठापे आपे आपे जोर विछोड़े करता आपे मार जीवाएगा जेती है तेती तुद अंदर देखें आप बैठ बिज मंदर नानक साच कर।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाए पाणे सहलवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मनमुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूणी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, किन में चाहे फेर उसारे, रूप न रेखिया मृत नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर सापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, कुरों विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस देवड़े आई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू मेला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओपत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेत नहीं।

हर पुरख नहीं जात ना जन्मा ना सो दुख सुख पाएदा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम पेख ना कोई ना को नाथ कहाएदा जप तप संजम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विदसे आपे कीमत पाएदा ना सुच संजम तुलसी माला गोपी कान न गौ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा गौ

ना को शेख मसाए कहा जी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना तो कहन कहाएंदा पाओ न पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एहो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आप्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्ण महेश उपाए माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पता।

नानक साच रते बिस्मादी। बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला, आपे आप उपाय निराला, साचा थान कियो दयाला। कौन पानी अग्नि का बंधन काया, कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हारे, दसवें वासा अलख अपार है। सायर सप्त परे जल निर्मल,

सतगुरु मिले ता पूरा पाए प्रेम पदार्थ पाएगा। प्रेम पदार्थ ले अमोलो कभी न काट पूरा तोलो। सच्चे का व्यापारी हो वह सच्चो सौदा पाएगा। सच्चा सौदा बिरला को पाए पूरा सतगुरु हृदय मिलाए। गुरमुख होए सो हुकम पछाने माने हुकम समाएदा। हुक्मे आया हुक्म समाया हुक्मे दीसे जगत उपाया। हुक्मे सुर्ग मच पयाला हुक्मे कला रहाएदा। हुक्मे तरती तौल सिर पारंग हुक्मे पौन पानी गैनारंग। हुक्मे शिव शक्ति करवासा हुक्मे खेल खिलाएदा। हुक्मे आडाने आगासी हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी। हुक्मे सास गिरा सदा फुन हुक्मे देख दिखाएदा। हुक्म उपाए दस अवतारा देव दानव अगणत अपारा। माने हुक्म सो दरगह पैजे साथ मिलाए समाएदा। हुक्मे जुग शक्ति गुदारे हुक्मे सिद्ध साधक विचारे। आप नाथ नथी सब जाकी बख्शे मुक्त कराएदा। काया कोट करे महराजा नेब खवास पला दरवाजा। मिथ्या लोभ नाही करवासा लब पाप पछताएदा। सत संतोख नगर में कारी जत सत संयम शरण मुरारी। नानक सहज मिले जग जीवन गुर सबदी पत पाएदा। मारू महला पहला सुन कला अपरंपर तारी। आप निरालम अपर अपारी आपे कुदरत कर कर देखे। सुनो सुन उपाएदा कौन पानी सुने के साजे। श्रेष्ठ उपाय काया गढ़ राजे अगन पानी जियो ज्योत कुमारी। सुनने कला रहाएदा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय। सुनने वर्ते जुग सवाए इस पद विचारे सो जन पूरा। इस मिलिए परम चुकाएदा सुनो सपत सरोवर थापे। जिन साजे विचारे आपे तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे। फिर बहुर जोन न पाएदा सुनो चंद सूरज गैनारे। किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे सुनने अलख अपार निरालम। सुनने ताड़ी लाएदा सुनो तरत आकाश उपाए। बिन थम्मा राखे सच काल पाए। त्रिभुवन साज में खुली माया आप उपाय खपाएदा। सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी। कुछ कुछ चलत किया सिर करते विस्माद शब्द देखाएदा। सुनो रात दिन सदोय किए ओ पत खपत सुखा दुख दिए। सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएदा। साम वेद ऋग जुजर असर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण। ताकि कीमत कह न सके को त्यों बोले ज्यों बोलाएदा। सुनो सपत पताल उपाय सुनो पवन रखे लिवलाए। आपे कारण किया परंपर सब तेरो किया कमाएदा। राज तम सत कल तेरी छाया जन्म मरण हो मैं दुख पाया। जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराएदा। सुनो उपजे दस अवतारा श्रेष्ठ उपाय किया पासारा। देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएदा। गुरमुख समझे रोग न होई हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई। जुग है जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त पया पत पाएदा। पंच तत् सुनो परिगासा दे संजोगी कर्म अभ्यासा। बुरा पला दोय मस्तक लीखे पाप पुन भी जाएदा। उत्तम सतगुरु पुरख निराले शब्द रते हर रसमत वाले। रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये पूरे पाग मिलाएदा। इस मन माया को

पाया पंच तत् मिल ए तनसिया आत्म राम पाए सुखतिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना तिस भूख प्यास मन मान्या सर्व निरंजन कट कट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुवाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती सब दिर साल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावे सोई जाकी त्रिभुवन सोजी होई नानक बूजो ए विद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रह निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जग आया कर दर मंदर जाने सोई जिस पूरे गुर ते सोजी होई काया गर महल मैली प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाया चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी सेवक पंच नाही बिचाखी अंतर वस्त अनूप निर्मोलक गुर मिले हर तन पाया तख्त बहे तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक आद जुगादी है भी होसी सहसा परम चुकाया तख्त सलाम होवे दिन राती क्यो साथ वडाई गुरमत लिव जाती नानक राम जपो तर तारी हर अंत सखाई पाया मारू मैला पहला हर तन संचो रे जन पाई सतगुरु सेव रहो सरनाई तस्कर चोर ना लागे ताको तुन उपजे शब्द जगाया तू एकंकार निरालम राजा तू आप सवारे जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक।

दस में पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरुष सुजाना अगल करे गुरु ज्ञान समाना काम क्रोध ले गर्दन मारे हो मैं लोभ चुकाया सच्चे थान वसे निरंकारा आप पछाने सब विचारा सच्चे महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया ना मन चले न पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाहद वावे।

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साची जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोर सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रवदाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकल निरंजन गाया, हम में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहार, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाए जमते क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कथ है देखे अपरंपर, सुन गर्व न जोनी जाया, सच बिन सत संतोख न पावे, बिन गुरु मुक्त न आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कह कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत ले हो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत ले हो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत ले हो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के फाहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तत निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम

देख अदित रहो लिव लागी, सब त्रिभुवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनुपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाई है, बाहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मतवा के, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार कराया, ए पौजल जगत शब्द गुर तरिय, अंतर की दुबदा अंतर जरिय, पंच बाण ले जम को मारे, गगन अंतर तनख चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये, शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुरु है रखवाला, भगत परापत गुरु गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजे, गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपौ सो सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो, नानक गुरमत सो पाया, अंतर की जब सतगुरु जाने, सो निरपौ गुरु शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर।

अंतना मन डोलाया, निरपौसो अब अंतरवस्या, एनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जब संगत पाये, हर सहजे सहज मिलाया, अंतर बाहर सो प्रभ जाने, रह अलिप्त चलते कार्याने, ऊपर आद सर्व तिहु लोई, सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला, कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही क्यों चारा, जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्तै ताक सब आया, जिसको मेले सुर समाए, गुर सब दी हर नाम ते आए, अनद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, संत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गए जस गाया, सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गए गत पत पाए, साकत ठोर नाई हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवो सत गुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा, विख्या मल जाए अमृत सर नावो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर से वो संत न की जय, आशा माए निराश रही जय, संसार दुख बिना सन से वो, फिर बहुर रोग न लाया, साचे पावे तिस वडी आए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुर मूरत एका वर्त है, नानक हर गुर पाया, वाचे है पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना, अजदर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया, करें विपूत लगावे पस में, अंतर क्रोध चंडाल सोहो में, पखंड की ने जोग न पाये, बिन सतगुर अलख न पाया, तीरथ वर्त नेम करें उद्याना, जत सत संजम कथे ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुर परम न जाया, न्योली कर्म प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी, पाखंड तरम प्रीत

गुर सतगुर अलख लखाया मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुक्मी सहजे सृष्ट उपाय कर कर वेखे अपनी वड्याई आपे करे कराए आपे हुक्मे रहा समाई है माया मोह जगत गुबारा गुरमुख बूझे को विचारा आपे नजर करे सो पाए आपे मेल मिलाई है आपे मेले देवड्याई गुर प्रसादी कीमत पाई मनमुख बहुत पुरे बिलला दी दूजे पाए खुआई है हौ मैं माया विचे पाई मनमुख पूले पत गवाई गुरमुख होवे सो नाए राचे साचे रहा समाई है गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया मन सामार मन माहे समाया आपे खेल करे सब करता आपे दे बुझाई है सतगुर सेवे आप गवाए मिल प्रीतम शब्द सुख पाए अंतर प्यार पगती राता सहज मते बन आई है दुख निवारण गुर से जाता आप मिलिया जग जीवन दाता जिसनो लाए सोई बूझे पौ परम शरीरों जाई है आपसे गुरुमुख

जन संसारा जल जल खपे बहुत विकारा मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुरु बूझ बुझाई है सतगुरु सेवन सेवड पागी साचे नाम सदा लिवलागी अंतर नाम रविया ने केवल कृष्णा शब्द।

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्त है सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हूँ मैं मेरा पसरिया पासारा, अंधिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर शब्द सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, हम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना।

जय अंग दिन नाम रवे दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजे है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरसा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई।

काया संगारे मर मर जम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने सुध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है। हम मैं मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हो होर ना जाना सहजे होए सो होई है। बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हो मैं सब देखोई है। आते गुण

पाए सुबाए है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी।

परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी। हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुके जिस कुत्ता। जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम है मुक्त न पावे कोई। बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी। जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे। साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिर जे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई। आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुर सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे। आपे करता कर कर वेखे, जो पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे

दरसा तै पत पाई है मारू मैला तीजा जो आया सो सबको जाती दूजे पाए बांदा जम फांसी सतगुरु राखे से जन उभरे साचे साथ समाई है आपे करता कर कर वेख है जिसनो नदर करे सोई जन लेख है गुरमुख ज्ञान किस सब किस पूजे अज्ञानी अंध कमाई है मन मुख सहसा बूझ न पाई मर मर जम में जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साथ समाई है संदे तावत मन पया मनूरा सिर हो वे कंचन पेटे गुरपूरा आपे बख्श ले सुख पाए पूरे शब्द मिलाई है दुर्मत झूठी बुरी बुरियार अवगणियारी अवगणियार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है अवगणियारी कंस न पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साओ न जाने मूरख बिन गुर बूझ न पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुरु मेल मिलाई है आपे हुक्म करे सब वेखे इकना बख्श ले तुर लेखे हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हम मैं तात मुह रख लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेखे बिन सतगुरु बूझ न पाई है एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे और धारे सतगुर सेवा ते सुख पाया हर के नाम समाई है दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते पेक करे न पाए बिन सतगुर सुख न पाई है किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तित राह चलाए आपे मेहरवान सुखदाता ज्यो पावे तिह चलाई है आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता एक है गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख परम पौ जाई है गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है मारू महला तीजा सत्साला ही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कहती रह सब कट भोग वै सदा दिन राती आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाई गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है किस सेवी तै किस सलाही सतगुरु सेवी शब्द सलाही सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत ना लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अंदिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है हर नाम चेता अवरना पूजा एको सेवी अवरना दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है परम परम जोनी फिर आया आप पूला जा खसम पुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अवनासी है काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पात्र मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है ना कोई करे ना करने जोगा
आपे करे करावे सो होएगा, आपे बस लें सुख पाए सभी नाम निवासी है। तिर तन धरती शब्द बीज अपारा, हर साचे सेती वणज अपारा, सच तन जमया कोट ना आवे अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगणिया रे नो गुण की जय, आपे बस ले नाम दी जय, गुरमुख हो वैसो पट पाए इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ ना होई, गुर प्रसादी बूझे कोई, गुरमुख हो वैसो तन पाए सभी नाम निवासी है। अनलवाओ परम फुलाई, माया मोह सुध न काई, मनमुख अंधे किछु न सूझे, गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हो मैं माया सूते, अपना कर न संभाले अंत बिगूते, पर निंदा करें बो चिंता जाले, दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई, आपे गुरमुख दे बुझाई, नानक नाम रते।

ताए ले जग जीवन दाता खापे बख्शे दे वड्याई गुरमत एव मन पी जय है माया लहर शब्द निवारी एव मन निर्मल हो मैं मारी सहजे गुण गावे रंग राता रसना राम रवि जय है मेरी मेरी करत विहानी मन मुख ना बूझे फिर आणी जम काल कड़ी मोत निहाल।

माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमती हर नाम पी जाए, सब नाम विच वरते एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौ मैं मार सदा सुख पाया, नाए साचे अमृत पी जाए, किल विख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किछ आपे आप वरते, गुरमुख तन मन पी जाए, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जाए, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जाए, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत शांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

पढ़ लू जय। अंतर मैल अज्ञानी अंधा क्यों कर दुत्तर तरी जय हे। वेद बाद सब आख वखाने ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने। पुन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पीजे हे। आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा।

सच्चे सच्चा सत रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही सात वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है, सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोट ना आवे, बूझे कोई चारी है, सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ा।

पौड़ी ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है माया मोह शब्द जलाया सच मन वस्या जा सुध पाया सच्चे की सब सच्ची करनी हूँ मैं सिखा निवारी है माया मोह सब आपे कीना गुरमुख विरले किन्ही चीना गुरमुख वो वै सो सच कमावे साची करनी सारी है कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हूँ मैं मार निवारी है सच लगे तिन सब किस पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे ऐसे साचे से दर साचे नगरी नदर सवारी है बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सवाया बिन गुर दुख सुख जाते नाही माया मोह दुख पारी है साचा शब्द जिना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सच्चो सेवे सच त्यावे सच रते विचारी है गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सुख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होवा गुर की सेव प्यारी है से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे पाने आप मिलाए सतगुर राखे से जन उभरे होर माया मोह खुआरी है गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कुटुंब ना तिस माता एको एक रविया सब अंतर सब ना जिया का आधारी है हूँ मैं मेरा दूजा पाया किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया गुर साचे ते साच कमावे साचे दुख निवारी है जा तू दे सदा सुख पाए साचे सब दे साच कमाए अंदर साचा मन तन साचा।

तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्तै एक प्रछन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एको जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा तिर साचा साला ही सदही जिन गुर का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह सबद पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक स्ने प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द ना ही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद, ए मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरुमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरुमुख एक को

आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वर्त सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत परे पंडारा, आपे

कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जमे चूके फेरी। साचे गुण गावे दिन राती, जुग जुग एक हो जाता है। माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया। जो तुड पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष सोग सब दुख है पारा। गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है। कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा। पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोह हर क्यों चित न लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे। मनमुख परम पुले पेख सारी, अंतकाल पछताता है। हर कै पाने हर गुण गाए, सब किल विख काटे दुख सवाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है। जिसनो नदर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए। गुण अवगुण का एक को दाता, गुरमुख विर ली जाता है। मेरा प्रभ निर्मल अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा। आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है। मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा। हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है। गढ़ काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा। गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है। रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा। गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है। सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा। मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विर ले जाता है। आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए। नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एक हो जाता है। मारू महला तीजा, को सच सेवियो सृजन हारा। सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। आपे अगम असहा है, आपे सच्चा सत वरताए। एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे। नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए। सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे। इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करें पर आप पछाणे। एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे। पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए। विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे। काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे। माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे। जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए। गुरमती नाम मन वसाए, अंदर नाम त्याए साचा। इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई। गुरमुख देवे मन वसाए, जिन मन वस्या से जन सो है। तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुण दाता। लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा। अंत न पावे अलख बेवा, जिनको नजर करे तू अपनी। गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई। एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई। महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुक्म अपारा। मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई। हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने। तावत राखे।

खबर सलाह है से जन निर्मल निज करवा साता है सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहा है मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन सात नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कट अंतर शब्द सच्चा ओ माहा है। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहा है। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहा है। अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेड़ ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

आए गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे काटे दुर्मत साहा है गुरुमुख उपजे साज समावे ना मर जमे ना जूनी पावे गुरुमुख सदा रहे रंग राते अंदिन लें दे लाहा है गुरुमुख भगत सोहे दरबारे सच्ची बाणी सब सवारे अंदिन गुण गावे दिन राती सह छेती कर जाहा है सतगुर पूरा सब सुनाए अंदिन भगत करो लिव लाए हर गुण गावे सद ही निर्मल निर्मल गुण पाप सहा है गुण का दाता सच्चा कोई गुरमुख बिरला बूझे कोई नानक जन नाम सलाहे बिगसे सो नाम बेपरवाह है मारू महला तीजा हर जियो सेवियो अगम अपारा किसदा अंत न पाये पारा वारा गुर प्रसाद रविया कट अंतर तित कट मत अगाहा है सब में वरत एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सबना प्रतपाल करे जग जीवन दींदा रिजिक संभाहा है पूरे सतगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगत उपाया हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिर साहा पात साहा है सच्चा सतगुर शब्द अपारा तिस दे शब्द निस्तर है संसारा आपे करता कर कर वेख है देंदा फास गिराहा है कोट मदे किसे बुझाए गुर के शब्द रते रंग लाए हर साला है सदा सुखदाता हर

सतगुर पूरा साथ दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्त है सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब देशे वै सो जंत्रापे, अनदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लभ लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया तट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरतन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथी अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन

वर्त अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाणे कमल बिकसे बुध कहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिर्फ सलाह है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावन।

गुर कै शब्द अमृती आया, अमृती अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुका है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्द सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सराहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तफे साला है, मेरे प्रभु साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आसाला है, तेरे गुण प्रभु तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख कथा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, सब दे सच सलाहा है, से जन मिले

पूरे गुरते सो जी होई, हर रस पीने सदा त्यायन, गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुरमत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुकत तिसहते पाहा है, सच संजम

कहो मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिन से नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सब तुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया।

हर जप जाप समाहा है मारू महला तीजा गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार गुरमुख कार करे प्रभ पावे गुरमुख पूरा पाएदा गुरमुख मनुआ उल्ट करावे गुरमुख बाणी नाद बजावे गुरमुख सच रते बैरागी निज करवासा पाएदा गुर की साखी अमृत पासी सच्चे सबदे सच सुवाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच समाएदा गुरमुख मन निर्मल सत करनावे मैल न लागे सच

सबसे मैं सत्यो सच्चा। गुरुमुख सबक सुनाएदा, गुरुमुख हो वह सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए। गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चे हर गुण गाएदा। गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार। पाए भगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा। गुरुमुख हो वह

जा तिस पावे ता मन वसाए अपने पाने सदा रंग राता पाने मन वसाए दा मन हट कर्म करे सोची जाए बहुते पेश करे नहीं पी जाए बिख्या राते दुख कमावे।

पिता मारू महला तीजा आपके श्रेष्ठ हुकुम सब साजी आपके खाप उसाप निवाजी आपके न्याय करे सब साचा साचे साथ मिलाएंदा काया कोट है आकारा माया मोह पसरिया।

दिसंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जमकाले, जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाएदा, जब तब संयम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाएदा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाएदा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्त है सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएदा, एक माया मोह गर्भ व्या

सच नाम सितलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पचाता सुदनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई जी जंत तेरी सर।

मत देह सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा अन दिन आर जा छिजदी जाए रैन दिन दोए साखी आए मन मुख अंध ना के तै मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पौ पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच्चा सच सोई हों में मार मिलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे पूला फिरे अपागा कर्म होवे ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाए मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाए बिन भगती बिस्ता विच वासा बिस्ता विच फिर पाएंदा कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए।

करता जो पावे तुम्हें चलाएंदा। सिमरत सासत अंत न जाने मूरख अंधा तप न पछाने। आपे करे कराए करता आपे परम पुलाएंदा। सब किस आपे आप कराए आपे सिर सिर संदे लाए। आपे थाप उठा पे वेख है गुरमुख आप बुझाएंदा। सच्चा साहिब गहर गंभीरा सदा सलाही तामन तीरा। अदम अगोचर कीमत नहीं पाई गुरमुख मन वसाएंदा। आप निराल मोहर तंदे लो।

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा। ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेद करे सब साचा, आपे पन कराएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सो चितलाएंदा। बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाएदा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाएदा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होवा, सहजे सह समाएदा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूड़ बोल दुख पाएदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएदा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएदा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

को पाएगा। सतगुरु सेवे सहज आनंदा, हृदय आए उठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएगा। सतगुरु ते बिछड़े तिन्नी दुख पाया, हम दिन मारिये दुख सबाया, मत्थे काले महल न पावे, दुख ही विच दुख पाएगा। सतगुरु सेवे सेवड़ पागी।

अंतर साज परम सुखाए सत सचै का आपे दाता जिस देव है सो सच पाएगा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएगा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा ले रहे जो तिल कहानी पीड़ाएगा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएगा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएगा अंदर प्रदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

सामने सो मिले तुदाए, जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराएदा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सब श्रेष्ठ उपाई, जितनो पाना दे तिस पाएदा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना ना मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल ना कबू पाएदा, सतगुर मेले दे वड्याई।

पी जय रसना नाम से आए रस पी जय रस ही से रस पाएगा महले अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच देव सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नाम है मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा।

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुरपुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे हर सच्चे।

दिन सब दे सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएगा। एक चित आए जन्म गवाए मन मुख लागे दूजे पाए ए वेला सिर हाथ न आवे पद किसे पछताएगा। गुर के शब्द पवित्र शरीरा तिस विच वसे सच गुणी गहीरा सचो सच वेखे सब थाई सच

मेरे साथ सुख पाएगा। सोचे तेज जिस आप चिताए, गुर कै शब्द वसै मन आए। आपे वेखे आपे बूझे, आपे आप समाएगा। जिन मन विच वथ पाई सोई जाने, गुर कै शब्द आप पछाए।

शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्त कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया ना जाए, मन मुख फूले मोए बिल्लाए, जिनको नजर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस्त समाले, हर का नाम से आए दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा।

पुत्र इस बाणी ते हर नाम पाएगा। वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेतै बद्दा जमकाले। दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएगा। गुरमुख एक स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा मने समाए। साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएगा। जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते। सतगुरु सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएगा। माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए। सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जानदे बिलम न लाएगा। इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए। पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएगा। मनमुख बहुत करे अभिमान, दरगह कभी न पावे मान। दूजे लागे जन्म गवाया, बिन बूझे दुख पाएगा। मेरे प्रभ अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया। सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएगा। इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बणत बनाई। गुरमुख होवे सो काया सो दे, आपे आप मिलाएगा। काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा। गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएगा। सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा। गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएगा। काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई। जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएंदा। हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई। आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएंदा। आपे सच्चा शब्द मिलाए, सब दे विच्चों परम चुकाए। नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा। मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे। आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सकै तिसनो। गुर शब्दी मेल आया, तुदनो सेवे जो तुद पावे। गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती। रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे। हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे। दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए। गुर कै शब्दे आप गवाए, अन दिन सदा हर पगती राते। इस जग में लाहा पाया, तेरे गुण कहां मैं कहन न जाई। अंत न पारा कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता। गुण में गुणी समाया, इस जग में मोह है पसारा। मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया। बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुरु पाए। हौ मैं मैल शब्द जलाए, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन। अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई। सच नाम हर हृदय वसाई, कीमत कौन करे प्रभ तेरी। तू आपे सहज समाया, नाम अमोलक अगम अपारा। ना को हुआ तो लनहारा, आपे तोले तोल तोलाए। गुर शब्दी मेल तोलाया, सेवक सेवे करे अरदास। तू आपे मेल बहाले पास, सबना जिया का सुखदाता। पूरे कर्म ते आया, जत सत संजम जे सच कमावे। इहो मन निर्मल जे हर गुण गावे। इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चितलाया हऊ मैं विच सब जलै शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमाए जम का जेवड़ा कदे न काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उधारे गुर कै शब्द मरे मन मारे हऊ मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारो वारा सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माए समाया करे अंदर को कर पाए गुर कै शब्दे सह सुवाए उथे सोग विजोग ना व्यापे सहजे सह समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत ना होई बिन शब्दे पार न पाए कोई सहजे गुण रवे दिन राती ज्योति जोत मिलाया काया बिरख पंखी विचवासा अमृत चुगे गुर

सतगुर मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है मारू महला चौथा। हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी,

जन नानक नाम जपो पव खंडन सुख सहजे रहन विहानी है जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया जो शरण परे तिसकी पत राखे जाए पूछो वेद पुराणी है जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे गुर के शब्द परम पौ पागे विचे गृह सदा रहे उदासी ज्यो कमल रहे विच पानी है विच हो मैं सेवा थाए न पाए जन्म मरे फिर आवे जाए सो तप पूरा साई सेवा जो हर मेरे मन पानी है हो क्या गुण तेरे आखा स्वामी तू सर्व जिया का अंतर जामी हो मांगो दान तुझे पह करते हर अंदिन नाम वखानी है किसी जोर अंकार बोलन का किसी जोर दीवान माया का मैं हर बिन टेक तर अवरना काई तू करते राख मैं निमानी है निमाने मा

हर हर नाम जिन्हें सदा त्याया, तिन्हें गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख पाई हे, जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप

जन्म मरण की जोन न पवया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थान थनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन।

रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा, पूछ अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा की ने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग बिलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे दिन रात।

पीतर जित उतरे पूख प्यासा है सगले कर्म तर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन पिर आनंद उलासा है तन अंधी पिर चपल सियाना पंच तत्कार।

जो प्रेम बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए, आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

मेरा कट कट पूरन सिर सिरैन मेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हरखवंत अनंत दयाला प्रगट रहो प्रभु।

करहें पगत अर रंग अपारा खिन मैं थाप उठा पनहारा पारो तोल बेअंत स्वामी हुकुम मन पगती जाहे जिस देहे दर्श सोई।

सुरत शब्द रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे गुरदूर किया पर...

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु सासत सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फासे, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए।

सतगुर पेट हर जस मुख पणी है, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दर गै देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है। गुर मिलिया सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिया ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माए समानी, आप सुनी तै आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ कर

कल युग में कीर्तन प्रदाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना। आप तरह सगले कुलतारे, हर दरगे पत से जाएदा, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया, नेचल एक आप अविनाशी, सो नेचल ज्योत सैंत आएदा, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, जो जल तरंग

अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जाले मिलाई। गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय तरी

श्रवण सुनिए दूजी अवर न जाप सकाई सगल तुम्हारी तारण आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी एक पूखे एक त्रिपत अघाए सब सह तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगतन संगराचा आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा सदा सदा सद होवन हारा ऊंचा अगम अथ

पुरख निरारे। आप छोड़ पे शरण आई जिसका सा तिस्कालना, ऐसा कोवड़ पागी आया आठ पहर जिन खसम ते आया, तिस जन कै संग

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा।

जय सतगुरु साहु भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायणा जां की तूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता सतपुरुख सतगुर परमेसर जिस पेटत पार पराय।

सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनो लाए ले सो सेवक जिस वड पाग मथाएना गुर की महिमा वेद न जाने तुच्छ मात सुन सुन वखाने पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन शीतलायना जा की सोए सुनी मन जीवे हृदय वसे ता ठंडा थीवे गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए तिस जम के पंथ न पाएना संतन की शरणाई पड़िया जियो प्राण तन आगे तरिया सेवा सुरत न जाना काई तुम करो दया किरमाई।

बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संतें संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए किरपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सत

सिद्धैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पश पंखी सब पूता सिमरै वन पर्वत अवधूता लता बलि साख सब सिमरै रव रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन।

परम रुणा। गुरु का शब्द वसै मन जाके, दुख दर्द प्रमता का भागे। सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना। सो तनवंता जिन प्रवत्याया, सो पतवंता जिन साध।

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांछै जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे हर औखद हर निर्मल रापै मंगना श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पा

पूरन परमेसर मिल कदे ना होवी पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल तल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट पंडार नाही।

आद मद अंत प्रवरवया त्रिष्ण बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सदबक्षंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना।

किंचन काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हो सेवक कीता जियो पिंड सब तेरा दीता करन करावन सब तू है नाही किछ असाड़ा।

अगम अगोचर बेअंत अतोला है नाही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरुमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे न आवे जम नेड़ा, कीमत कागद कही न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई।

कुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत न आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समी

तुद लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी शेख अंत न जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कै संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फाना।

ए पांच वक्त तेरे अपरपरा, सगली जान करो मोदीफा, बद अमल छोड़ करो हथ पूजा, खुदाए एक बुझ देवो बांगा, बुरगु बरखुरदार खरा, हक हलाल बखोरो खाना, दिल दरियाओ तो मैलाना, पीर पछाणे पिस्ती सोई, अजराइल ना दोज ठरा, काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना, ना पाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते तोवे, दुनिया रंग ना आवे नेड़े, ज्यों कुसम पाट क्यों पाक हरा, जाको मेर मेर मेरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई शेख मसाइक हाजी, सो बंदा जिस नजर नरा, कुदरत कादर करण करीमा, सिफत मोहब्बत अथा रहीमा, हक हुक्म सच खुदाया, बुझ नानक बंद खलास तरा, मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब ऊच बिराजे, आपे थाप उठापे साजे, प्रभ की शरण गहत सुख पाई है, किछ पौ न व्यापे बाल का, गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया, रकत किरम में नहीं संगारिया, अपना सिमरन दे प्रतपालिया, ओ सगल कटा का मालका, चरण कमल शरणाई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख निवारे, जप हर हर पौ नहीं काल का, समरथ अकत अगोचर देवा, जी जंत सबता की सेवा, अंडज जे रज से तज उत्पुज, बहु प्रकारी पालका, तिसे प्राप्त होए निधाना, राम नाम रस अंतर माना, कर गहली ने अंध कूपते, विरले के साल का, आद अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सोहोई, प्रम पौ मिटिया साध संगते, दालद ना कोई काल का, उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोर वाला, बासन मेट

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार जाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्र

नमस्कार सद्गुरु प्रसाद। चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी। तन मन अर्प तरी सब आ गए, जग में नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे। सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना। जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही। साध संग पज अचुत स्वामी, दरगे शोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौनिद। सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा। सासत सिमरत वेद बखान।

ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर।

पूरे परदाना, हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पछाना, ज्ञानिया का यो महत है मन माए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए ते आना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पी ख्या ले, दरगे लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ, पिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोए, ऐसा सतगुरु लोड लहो जिस जेवड अवर ना कोए, तिस शरण आई छूटी है लेखा मंगे न कोए, सच दृढ़ आए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यों लूज दे अगे पिछे दुख पावे, हर जियो अंकार ना पावे वेद कूक सुनावे।

नानक जे इव मारिए गुरसब दी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब को नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुरु पेटे सोए पौड़ी दो वै तरफा उपाय उन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर शरणाई छुटी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगे सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोय माया लागे थिन मैं मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे फिर वेला हथ ना आवई जम का डंड लागे तिन जम डंड ना लगे जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुदे लागे। श्लोक महला पहला। सर्वे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लागणो।

नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नवनिध नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला। पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा फरीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोए महला पहला। सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे प्रभाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे। श्लोक महला पहला। सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल हुक्म न जाई मेट

लाल लवाए अंदर मुस्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी। इस जुग में नाम निदान है नामो नाल चले एहो खुट कदे ना निकुट खाए खर्चियो पल्ले हर जन नेड़ ना आवे जम कंकर जम कले से सा सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ले हर कृपा ते हर पाये जा आप हर कल्ले श्लोक महला तीजा। मन मुख व्यापार है सार न जाननी बिख विहाजे बिख संग रहे बिख्यो तरह प्यार बारो पंडित।

हुक्म मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक एवै जानिए सब किछ तिसैर जाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नावे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु ना पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम्मे मरे गुर सब छुटाही, आप करे किस आखिए दूजा को नाही। श्लोक मैला तीजा, इस जग में संती तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए, सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए, जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निर तन है माया नो बिलाए, अंदिन फिरदा सदा रहे पुख न कदे जाए, सांत ना कदे आवई न सुख वसे मन आए, सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए।

जात है सब कोय। पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर, मंतन होए निहाल पापा दह हर। आवन जाना चुके जन्म न जाए मर, सच नाम आधार सोग ना मोए जर। नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाणे जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं तै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल आहे हर

काजल हार तमूल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो था।

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी तू अगम दयाल।

जिस बावड़ गर्भ ना पावई, जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावै त्यों चल दे, किछ वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबण ज्यों।

जिस मेलै सतगुर आप तिसके सब कुल तरा। सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं की त्यों शिव सकत वरताइया शिव अगै शक्ति हारिया एव हर पाइया एक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

गुजड़ा लदम लाल मथा ही प्रगट थिया सोई सुहावा थान जिथे प्रिय नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरा।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना। जित डाढ़ी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ डाढ़ी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाढ़ी

मन तन अत गुलाल नानक बिन लावै आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी हर जीओ जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुरु भोजन पार लंघाया जित्ता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा जित लाइयन तित्तै लगदिया न खिंजो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा।

पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो ना पाईए, बिन सतगुर मनवा ना लगे। धर्म धीरा कल अंधरे, यो पापी मूल न तगे। अह कर करे सो अह कर पाए, एक घड़ी मोहत ना।

जान चंद्र बालगरी सुख घटाओ दोए इस पंधानु घर घने पौड़ी। अकल कला न पाई है प्रभ अलख लेखं खड दर्शन ब्रह्म ते सिरे न मिली है भेखं। वर्त करे चंद्रायणा से कुछ न लेखं वेद पढ़े संपूर्ण तत्सार न देखं। तिलक कढ़ाए स्नान कर अंतर काले संग भेखी प्रभु न लबई विन सच्ची सिखं। भूला मार्ग सो पवे जिस धुर मस्तक लेखं। तिन जन्म सवारा आपना जिन गुर अखी देखं। दखने महला पंजवा सो निवाहु गढ़ जो चलाऊ नाथी है कार पुड़ावी छड़ सम्मल सच धनी महला पंजवा। हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आप नानक मस्तक लिखया महला पंजवा। मुख सुहावे नाम चौ आठ पैर गुण गाओ नानक दर गय मनी है मिली निथावे थाओ पौड़ी। बार देख न पाई है प्रभु अंतर जामी एक सहर जियो बारी सब फिर निकामी। मन रत्ता कुटम स्यो नित गर्भ फिरामी फिर गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी। चल गया नाल न चली खिन जाए दिलामी विचर दे फिर संसार में हर जी हुकामी।

रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सिदासी, काजी शेख मसाय का सब दे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहा से, रोजा बाग निवाज कते विभिन बुझे सब जासी। लख चौरासी मेदनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदा एक खुदा बंदा अबनासी। दखने महला पंजवा दिखी अब ढंडोल, हिकस बाज न कोए आओ सजन तू मुख लग, मेरा तन मन ठंडा होए। महला पंजवा आसक आसा बहरा मुँह मन वड्डी आस, आस निराशा हित तू हौ बल बल बल गई आस। महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरे होद, बाज प्यारे अपने बिरही ना धीरोध। पौड़ी तट तीरथ देव देवालया केदार मथुरा काशी, कोट ते पीसा देवते सन इंद्र जासी। सिमरत सासर भेद चार खट दर्श समासी, पोथी पंडित गीत कवत कवते जी जासी। जति सती सन्यासियां सब काल वासी, मुन जोगी दिगम्बरा जमै सन जासी। जोदी सह सो विनसना सब विनस बिनासी, फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी। श्लोक दखने

सिमरत हर लादा नेचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गा वादा सच धर्म तप नेचलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप नेचलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुरसादा जिनको पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा स्लोक डखने महला पंजवा जो डुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निड़ो भी तार नानक तिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथा

ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दक्षिणे।

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोला सिद्ध साधक ज्ञानी जानिया कौन तुझनो तोले। बन्नन गरन समरथ है ओपत सब परले करण कारण समरथ है घट घट सब बोले। रुजक समाहे सबसे क्या

वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो पाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्म राम रहो, जटा भस्म लेपन।

राम उदक जे जन पिया ते बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते पया निरास। सब सच नजरी आया जो आत्म पया उदास। राम नाम रस

जब चूके पंच धात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ध्यावेंगे। जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावेंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी, तो गुर के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनरप जन्म न होई। कहो कबीर जो नाम समाने,

तारण तरण तब लग चाहिए जब लग तत् न जानिया। अब तो बिमल पए घटी मैं कह कभी मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण। काहे की जत है मन पावन जब जम आए केस ते पकड़े।

बिन बै अनुभव होय वणा हम्बे। सौ दूर देखे ता पौ पवे बैरागी अड़े, हुक्म बूझे ता निर्भो होय वणा हम्बे।

मुकत चारे सिद मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिर्यो अम्बरीक को दियो अभय पद राज भविकन अधिक करयो नवनिध ठाकुर दई सुदा मैं धुरु अटल अज हूँ न टर्यो भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय देत हर्यो नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पसुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारे रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ।

राम निंदा करते जन्म सिरानो कभु न सिमरो राम। कह कबीर से तह नहीं मूर्ख मुगध गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया, सूर सत थोड़ सादत किया। अबल बल तोड़या अचल चल थपया, अघड़ घड़या तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद वखाणया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मान्या रहा। अर्ज को अर्दया सरद को सरदया, सलल को सल सम्मान आया। बदत जय देव को रमया, ब्रह्म निर्वाण।

काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा, धन जो बन का गर्व न की जय कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस जय पटके ता दिन कृष्ण बस।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तलता कह, हर हर हर न जपस रसना, अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे, व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत हो बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत जन्म।

ओन बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बाणिया। साधन सबरस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभु बाणी सा सोहा गण नारे। नवघर थाप मैल घर।

सुख मैले नानक जेठ जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहले। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे धरती दुख सह सुख है अगन पक्ष है अगन रस सुख है मरिय चौख है भी सो किरत नहारे रस फिर छाया धन ताते की।

सावन सर्प मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर परदेश सिधाए, फिर धरनी आवे मरिए हावे दामन चमक डराए, सेज इकेली खरी दुहेली मरण पया दुखमाए, हर दिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे, नानक सा सोहागन चंती फिर कै अंक समावे, बादो परम भूली पर जो बन पछतानी, जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी, बरसे निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रिय प्रिय चवै बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते, मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, मानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रब तै ही जाई है, असुन आओ फिरा साधन झूर मुई, सामिली है प्रभु मेले दूजे पाए हुई, झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले, दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचे सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा, कतर किरत पया जो प्रभु पाया, दीपक सहज बल तत जलाया, दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो, धन ओ मा है सरसी, अवगुण मारी मर न सी जय गुण मारी तामरसी, नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा, मंगर माओ भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे, नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया, ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने का पाया, गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे, नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति ते आगे, भूख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख है, आवत की नाही मंतन वसे मुखे, मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी, अंडज धीरज सेतज उद्भुज गट गट जोत समानी, दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया हर स्यों पीत स्नेहो, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुरभावा सरनावा, गंग जमुन तय बेनी संगम सात समुन्द समावा, पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, नानक माग महारस हर जप असर तीरथ नाता, फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस भया आप गवाया, मन मोह चुकाया जा तिस पाया, कर कृपा घर आओ बहुते वेश करे फिर बाजो, मैली दान खाओ हार डोर रस पाट पटंबर फिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी, बेदस मारुति छिट्टी वार भले घड़ी मुरत पर

पाखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर पो भागे। रब सस दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख।

सच संभालिया अहमित देख बिचारिया दावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम कर्मा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़े आलमा गुरमुख जाग रहे चूकी अवमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरु दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुख परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल था त्रिभुवन घट घट थापया सो प्रभु गुरमुख जान्या करण कारण समरथ अपारा त्रिभुद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आपे पेयड़ घर सबद पतिनी सावरड़ा तिर पानी नानक सतगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी सुखारी महला पहला भोलावड़ा भुली भुल भुल पछो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगन मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुती हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं

वह चढ़ सवाया अपरम्पर आपे था पोथा पे किस भाव सो हो वह नानक मीरा हीरा बेदया गुण कह हार परो वह गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच है राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवर न दिस साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे।

हर सिमर एक अंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है किस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारिया। गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हर सतगुर विटो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रयो प्रयो सत्य नित चवा राम। प्रयो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुर गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पाथर गुर नाव बिख पव जल कारिये राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिये राम। हम मूड मुगद किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आ गए शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। सुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्यावे जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरिया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवास सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया। तिनका जन्म सफल्यो सब किया करते जिन गुर बचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यों तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ किस नाहे जा तू मेले ता हो आए मिला। जिनको तू हर मेले स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल होआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ। जिनको तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आरा दिया। तिनके पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया।
तिन देखे हो पया सनात। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी। जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार। हर संत संगत जन सुनो पाई गुरुमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या। वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया। सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे। सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे। सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके। हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाव पावनी होई। बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई। पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। सुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया। दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया। गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी। जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी। हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया। नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया। तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। खबर पई संसार आए त्रै लोआ। देखन आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया। जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किलविख नाश गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ। दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया। आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया। मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुर पिछे पई। जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया। मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका थाओ थे हो गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार।
सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा। कीमत कही न जाई ठाकुर, तेरा महल अपारा। सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्स नानक बलिहारी, जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा, सब गुण तेरे। खनिए वंजा दर्शन तेरे, दर्शन तेरे सुन प्रभु मेरे। निमख दृष्ट पेख जीवा, अमृत नाम सुनी जय तेरा। कृपा करे ता पीवा, आस प्यासी पिर के ताई। ज्यो चात्रिक बूंदे रे, कहो नानक जीड़ा बलिहारी। देहो दर्श प्रभ मेरे, तू साचा साहिब साओ अमिता। तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता। प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए। सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए। जाको कृपा करी जगदीसर, तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा। ठाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अवगत स्वामी, पूरन पुरख।